0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে নদী বা সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে যান তাদের উদ্দেশ্যে কোনো সতর্কবার্তা নেই বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠান শুনছেন, একটু পরে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। IMC 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार।

0: ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा भी कल काशी में सम्पन्न हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिन का शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपायों का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों को समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलेबल इम्प्रेटेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मुचावो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा, वहीं मीरा एंड्रीवा का मुकाबला एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of India Mobile Congress IMC at Yashobhoomi in New Delhi today. The event will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next

भी सीता को रावण अपने रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चला। मार्ग में एक स्थान पर गिरी सिंह पर बैठे वानर समूह को देख सीता ने अपना एक वस्त्र खंड गिरा दिया। उधर मारीच वध के स्थान पर अनुज लक्ष्मण को आया देख श्री राम ने चिंता प्रकट की। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर लक्ष्मण वहाँ क्यों चले आए? गोदावरी तट पर आश्रम सुना पाकर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। विलाप करते वन में भटकते दोनों भाइयों की तब जटायु से भेंट होती है, जो रावण से युद्ध में पराजित होकर जीवन की अंतिम घड़ियां बीत रहे हैं। श्री राम के दर्शनों के लिए अब तक उनके प्राण टिके हुए हैं।

0: শুনলেন রজনীকান্তের গান ইন্দ্রা সরকারের কণ্ঠে। একটু পরেই সংবাদ।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রূয়ন্তাম প্রবাচিকা ঋচা ঝা। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रशासनस्य प्रमुखरूपेण निरन्तरजनसेवां कुर्वता पञ्चविंशतिवर्षाणि पूर्णानि कृतानि। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नवदिल्ल्यां विकसितभारतसङ्कल्पसभां सम्बोधितवान्। सः उक्तवान् यत् भारतं दूरदर्शीनीतिभिः अथ कठिनपरिश्रमेण च सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षपर्यन्तं विकसितराष्ट्रस्य स्वप्नं निश्चितरूपेण साकारयिष्यति। विकसितभारतसङ्कल्पसभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् वर्तमानप्रशासनस्य नीतयः सर्वेषां नागरिकाणां कृते समाधानोपायानां प्रदाने केन्द्रिताः सन्ति।
2: सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए।

0: चाहिए और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां यशो भूमि इत्यत्र इंडिया मोबाइल कांग्रेस इत्यस्य दशम संस्करणस्य उद्घाटनं करिष्यति। ह्यः आरब्धः ह्यः अयं चतुर्दिवसीय कार्यक्रमः दूरसंचार विभागेन अथ सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इत्यनेन च संयुक्त रूपेण आयोज्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे दूरसंचारस्य अंकीय संपर्कस्य तथा प्रौद्योगिकी नवोन्मेषस्य क्षेत्रेषु भारतस्य उल्लेखनीय प्रगतिं प्रदर्शयिष्यते। सहैव वैश्विक स्तरे सहकाराय निवेशाय तथा ज्ञान विनिमयाय अयं कार्यक्रमः मञ्चं प्रदास्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: अद्यतनाः तिष्ठन्तु, अग्रेसराः भवन्तु। एक्स्पटले @AIRNews हिंदी अथ इंस्टाग्राम माध्यमे AIRNews अलर्ट्स इत्यत्र अस्मान् अनुसरन्तु।
1: वस्तु सेवा कर परिषदः 75वां उपवेशनम् अद्य नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इत्यत्र आयोजयिष्यते। वित्तमन्त्रिणः निर्मला सीतारमण इत्येतस्याः अध्यक्षतायां भविष्यमाने उपवेशने वस्तु सेवा कर सम्बद्ध विवादानां समाधानाय तथा क्रय सम्बद्ध कर समायोजनस्य प्रवाहं सुदृढीकर्तुं नीति सम्बद्ध परिष्काराणां विषये चर्चा भविष्यति। अस्य उद्देश्यम् अनुपालनाय अपेक्षितं समयं व्ययञ्च न्यूनीकरणमस्ति। वित्त मंत्रालयस्य सूत्रानुसारं प्रशासनं वस्तु सेवा कर व्यवस्थायां आगामी परिष्काराणां कृते पंच सूत्र सम्बद्ध योजनायाः प्रस्तावं प्रस्तोष्यति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः जन्मदिवसस्य अवसरात् सितम्बर मासस्य 17 दिनांके गुजरातस्य वडनगरात् काशी पर्यन्तं प्रारब्धा सेवा संकल्प बाइक यात्रा ह्यः सफलतया सम्पन्ना। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य नितिन नवीनस्य उपस्थितौ गुजरातस्य वडनगरात् काशी पर्यन्तम् आयोजितायाः अस्याः सेवा यात्रायाः समापन समारोहं सम्बोधितवान्। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उक्तवान् यत् वडनगरात् काशी पर्यन्तमियं यात्रा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः 25 वर्षीयं सेवा संकल्पं सम्मानयितुम् एकः अवसरः अस्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम चेत्येतेषां स्थलानां केषुचित् क्षेत्रेषु प्रबल वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशो भूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ ये आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। IMC 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। इनमें 5G और 6G, अगली पीढ़ी के AI नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, गैर स्थलीय नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्वांटम संचार, उद्यम परिवर्तन सर्कुलर इकोनॉमी और ESG तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण शामिल हैं। आयोजन में 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप तथा 900 विचारक और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे।

0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा कल काशी में संपन्न हुई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में आयोजित समापन समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में काशी और पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए बदलाव देश के सामने हैं। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपाय करने का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार अर्थव्यवस्थाओं द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों को समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। सऊदी नेतृत्व वाली गठबंधन ने बताया कि उसने रियाद के उत्तर में एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया और यमन की राजधानी सना में उस प्रक्षेपण स्थल को नष्ट कर दिया जिसका इस्तेमाल सऊदी राजधानी को निशाना बनाने के लिए किया गया था। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलिबल इम्पेंट्रेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि इस वर्ष एक्सरसाइज वायु शक्ति, विभिन्न द्विपक्षीय अभ्यास ड्रोनाथन और जारी ऐतिहासिक बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति सहित कई महत्वपूर्ण गतिविधियों के जरिए वायुसेना अपनी युद्धक तैयारी को लगातार परख रही है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मोचोवा का सामना निकोला बार्तुनकोवा से और मीरा एंड्रीवा का मैच एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of India Mobile Congress or IMC at Yashobhoomi in New Delhi today. The event will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next generation connectivity and technology-led growth. The 4-day event, which began yesterday, is being jointly organized by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India. The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi today, chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman. The meeting will discuss policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said that the government will propose a 5-pronged plan for the next set of reforms to the GST

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ ये आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
1: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से

0: 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
2: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार जीएसटी व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपने स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचना के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: जालिम लोशन
5: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी ये यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की ये सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरलम में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
2: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं। आज वही जलमार्ग कोच्चि वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
3: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
2: कोच्चि के लेखक टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है।
4: वाटर मेट्रो ने कोच्चि में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान

0: करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोच्ची के बैक वाटर्स में वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
1: कोच्ची भारत का पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो एयर कंडीशनड और बैटरी से चलने वाली नाव है, जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबुजान में कोटे डी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिरहामियामा आउट उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबुजान में हुई ये बैठकें डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरु मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
3: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूंगा और वहीं अच्छा लगता है। जरूरतें सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, इसी है नहीं। बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना घर में, हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़, इस तरफ बीच में हम रहते हैं।
4: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम है, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
5: न भाई न बहन न बीवी न बेटा,
6: कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। अब्दुल
4: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
7: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
4: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
8: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
4: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

0: नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। खेलों में पेचिंग में मनुष शाह और दिया चिताली ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मनुष और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरे होने का समाचार कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री का संकल्प प्रकाशित किया है, भारत के विकसित होने तक ना थकूंगा ना रुकूंगा। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी की वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का भी चित्र प्रकाशित किया है। RBI द्वारा त्योहारों से पहले रेपो दर बढ़ाने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रेपो दर में 0.25% की वृद्धि, कर्ज की किश्त बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने आज भारतीय वायुसेना दिवस पर खबर दी है, जहां हौसलों की उड़ान वहीं भारतीय वायुसेना, 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली, देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गांव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया शोध, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मनुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट 10th इंडिया मोबाइल कांग्रेस एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली दिस मॉर्निंग। 57 GST काउंसिल मीटिंग टू बी हेल्ड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली टुडे। Veteran actor Nana Patekar passes away in Goa. India joins US and 13 other economies in signing joint ministerial statement to address global excess capacity and production in key manufacturing sectors. IMD forecasts heavy rain in Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Uttarakhand, West Bengal and Sikkim today. And in table tennis, Manu Shah and Dia Chitali create history, become first Indian mixed doubles pair to reach Grand Smash final, semi-final, I beg your pardon, at China Smash in Beijing. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 10th edition of India Mobile Congress IMC at Yashobhumi in New Delhi today. The event will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next generation connectivity and technology-led growth. The four-day event, which began yesterday, is being jointly organized by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India. More from our correspondent.
3: India Mobile Congress 2026 has brought together global technology leaders

आप सुन रहे आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी।

देश की मिट्टी से जुड़े इस खूबसूरत एहसास के साथ आपने सुना फिल्म पूरब और पश्चिम का यह यादगार गीत। और दोस्तों, आज जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो जिक्र उस शक्ति का भी जो इसी भारत की सीमाओं की आसमान से हिफाजत करती है। वह शक्ति जिसके पंखों पर तिरंगा लहराता है, जिसकी उड़ान में साहस है, जिसकी तैयारी में अनुशासन है और जिसकी

हर जिम्मेदारी के केंद्र में है राष्ट्र की सुरक्षा। तो दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर, भारतीय वायु सेना दिवस के अवसर पर हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पित है उन जाबाज वायु योद्धाओं को जो आकाश की ऊंचाइयों से देश की सुरक्षा का प्रहरी बनकर खड़े हैं।

बल्कि समय पर देश की रक्षा करने का संकल्प है। तो दोस्तों, आसमान की ओर जब भी हमारी नजर उठती है तो हमें दिखाई देता है अनंत विस्तार, बादलों की दुनिया, और उसी आसमान में देश की सुरक्षा का प्रहरी बनकर उड़ते हमारे वायु योद्धा। तो दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय वायु सेना की, उस शक्ति की जो आकाश की सीमाओं की निगरानी करती है, युद्ध के समय राष्ट्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और प्राकृतिक आपदाओं से समय राहत एवं बचाव कार्यों में भी देशवासियों तक मदद पहुंचाती है। रक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय समारोह के दस्तावेजों में भी भारतीय वायु सेना की मानवीय सहायता और आपदा राहत भूमिका को रेखांकित किया गया है। तो आइए आज की इस विशेष यात्रा में चलते हैं आसमान के उन रक्षकों के साथ जिनके पंखों में देश का विश्वास है।

1 अप्रैल सन 1933 को इसकी पहली स्क्वाड्रन गठित हुई। शुरुआत बहुत छोटी थी, कुछ अधिकारी, वायु सैनिक और कुछ विमान, लेकिन इस छोटी सी शुरुआत ने आने वाले दशकों में भारतीय वायु शक्ति की मजबूत नींव रखी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना के विस्तार और अनुभव में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। स्वतंत्रता के बाद यह नाम कुछ समय तक रहा और सन 1950 में भारत के गणराज्य बनने के बाद इनमें से रॉयल शब्द हटा दिया गया और यह आधिकारिक रूप से इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायु सेना कहलाने लगी। यानी आज जिस भारतीय वायु सेना को हम जानते हैं उसके पीछे वर्षों की मेहनत, प्रशिक्षण, तकनीकी विकास और अनुभव की एक लंबी कहानी है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, देश के सामने अपनी सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा की बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय वायुसेना ने स्वतंत्र भारत की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी भूमिका निभानी शुरू की। आजादी के बाद वर्षों में वायुसेना के सामने केवल विमानों की संख्या बढ़ाना ही चुनौती नहीं था, आवश्यकता थी बेहतर प्रशिक्षण की, आधुनिक तकनीक की, मजबूत संचार व्यवस्था की और एक ऐसे वायु योद्धाओं की जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय ले सके। समय के साथ भारतीय वायुसेना ने अपने विमानों, हथियार, प्रणालियों, रडार, परिवहन क्षमता और प्रशिक्षण व्यवस्था में लगातार विकास किया और यही विकास आगे चलकर देश की कई महत्वपूर्ण सैन्य परिस्थितियों में काम आया।

भारतीय वायुसेना का इतिहास लगभग 9 दशक पुराना है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई। उस समय यह ब्रिटिश शासन के अधीन एक सहायक वायुसेना के रूप में अस्तित्व में आई थी और इसके बाद

भारतीय वायुसेना के इतिहास में 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 का युद्ध महत्वपूर्ण अध्याय है। 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना ने थल सेना और नौसेना के साथ मिलकर महत्वपूर्ण सैन्य भूमिका निभाई। पूर्वी मोर्चे पर वायु शक्ति के इस्तेमाल ने सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाने में सहायता की। यह केवल विमानों और हथियारों की कहानी नहीं थी, यह कहानी थी योजना की, प्रशिक्षण की, अनुशासन की और सही समय पर सही निर्णय लेने की। 1971 के युद्ध में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के संयुक्त संचालन की क्षमता को भी एक महत्वपूर्ण रूप में

सामने रखा। अब आते हैं एक ऐसे अध्याय पर जिसे भारतीय वायुसेना के इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है, 1999 का कारगिल संघर्ष। कारगिल की ऊंची पहाड़ियां, कठिन मौसम, बेहद चुनौतीपूर्ण भूगोल और दुर्गम लक्ष्य, ऐसे वातावरण में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वायु शक्ति का इस्तेमाल केवल हमले के लिए नहीं बल्कि जमीनी सैनिकों की सहायता, दुश्मन की रसद व्यवस्था को बाधित करने और महत्वपूर्ण ठिकानों पर कार्रवाई के लिए किया गया। और कारगिल पर उपलब्ध सैन्य इतिहास के दस्तावेजों में भी इन भूमिकाओं को यात्रा दर्ज है, क्योंकि कारगिल की कहानी हमें बताती है कि युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़ा जाता, कभी कभी युद्ध बादलों के ऊपर, पहाड़ों की चोटियों के आसपास और साथ ही साथ अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी लड़ा जाता है। और वहाँ भी सबसे महत्वपूर्ण होता है साहस के साथ साथ अनुशासन और प्रशिक्षण। और कारगिल के दौरान बिल्कुल इससे जुड़े प्रसंग जो होते हैं वो भारतीय वायुसेना के उस कठिन दौर की याद दिलाती है।

एक आवश्यक सूचना, हल्की से मध्यम गरज और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिले के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 घंटों के दौरान हल्के से मध्यम आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। तो दोस्तों, आप जहां रहे सतर्क रहे। तो दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला है 9:42 और 45 सेकंड और आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम रसधारा।

प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है, बाढ़ हो, भूकंप हो, भूस्खलन हो या किसी दूर दराज इलाके तक आवश्यक सहायता पहुंचानी हो, तब भी भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां सड़कें टूट जाती है, जहां सामान्य परिवहन पहुंचना कठिन हो जाता है, वहां आसमान एक रास्ता बन जाता है। राहत सामग्री पहुंचाना, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना और दुर्गम इलाकों में सहायता पहुंचाना, ये भी वायुसेना की सेवा का हिस्सा है। इसलिए भारतीय वायुसेना की पहचान केवल आसमान के योद्धाओं के रूप में नहीं, बल्कि आवश्यकता के समय राष्ट्र की सेवा में तत्पर शक्ति के रूप में भी दी जाती है। दोस्तों, आज का युद्ध केवल ताकत का नहीं बल्कि तकनीक और जानकारी का भी है। आधुनिक वायुसेना के लिए तेज विमान जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही महत्वपूर्ण हैं रडार, संचार व्यवस्था, निगरानी प्रणाली, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर, प्रशिक्षण और तकनीकी विशेषज्ञता। भारतीय वायुसेना भी समय के साथ अपनी क्षमताओं को विकसित करती रही, लेकिन किसी भी अत्याधुनिक विमान की असली ताकत उसके अंदर बैठा प्रशिक्षित वायु योद्धा होता है। क्योंकि एक पायलट को केवल विमान उड़ाना नहीं आता, उसे कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेना होता है, मौसम को समझना होता है, तकनीकी संकेतों को पहचानना होता है और सबसे बढ़कर अपने मिशन तक साथियों की सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। इसलिए वायुसेना की असली शक्ति है तकनीक और मानव साहस का मेल। दोस्तों, हम जब आसमान में किसी लड़ाकू विमान को तेजी से गुजरते देखते हैं तो शायद कुछ सेकंड के लिए ही हमारी नजर उस पर टिकती है, लेकिन उस कुछ सेकंड के पीछे वर्षों की तैयारी होती है। कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन, शारीरिक और मानसिक तैयारी, लगातार अभ्यास और अपने परिवार से दूर रहकर देश की सेवा। एक वायु योद्धा के लिए हर उड़ान केवल उड़ान नहीं होती, वह जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए भारतीय वायुसेना की शौर्य गाथा केवल युद्ध की घटनाओं से नहीं बनती, यह उन तमाम लोगों की कहानी है जो विमान उड़ाते हैं, उन्हें तकनीकी रूप से तैयार रखते हैं, रडार और संचार व्यवस्था संभालते हैं, मौसम का अध्ययन करते हैं, हवाई अड्डों पर काम करते हैं और हर मिशन को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो दोस्तों, किसी भी देश की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर नहीं होती, सुरक्षा एक विश्वास है। और जब देश का नागरिक रात को चैन से सोता है, अपने बच्चों को स्कूल भेजता है, अपने काम पर जाता है, तो उस विश्वास के पीछे हमारी सेनाओं के हजारों जवानों की मेहनत होती है। भारतीय वायुसेना का इतिहास हमें यही संदेश देता है कि आसमान कितना भी विशाल क्यों ना हो, जिम्मेदारी उससे भी बड़ी होती है। और जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो उसमें उन सभी वायु योद्धाओं का साहस भी शामिल होता है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभाया। तो दोस्तों, आज की हमारी यह यात्रा यही समाप्त होती है, लेकिन भारतीय वायु सेना की शौर्य गाथा कभी समाप्त नहीं होगी। 1932 में एक छोटी सी शुरुआत से लेकर आज ही आधुनिक वायु शक्ति तक का यह सफर हमें बताता है कि किसी संस्था की असली ताकत केवल उसके विमान या उसकी तकनीक में नहीं होती, उसकी असली ताकत होती है उसके लोग, उनका प्रशिक्षण, उनका अनुशासन, उनका साहस और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण। आसमान में उड़ता हुआ हर विमान हमें एक बात याद दिलाता है, देश की सीमाएं केवल जमीन पर नहीं होती, आसमान भी हमारी सुरक्षा का हिस्सा है। उन सभी वायु योद्धाओं को नमन जो अपने कर्तव्य के लिए हर समय तैयार रहते हैं, उन परिवारों को भी सलाम जो अपने प्रियजनों के देश की सेवा के लिए हौसला देते हैं, और उन वीरों को श्रद्धांजलि जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के अपने कर्तव्य में सर्वोच्च बलिदान दिया। इसी भावना के साथ मैं आपसे अब विदा लेती हूँ।

आसमान के रक्षकों को सलाम, भारतीय वायु सेना को सलाम और तिरंगे को सलाम। तो दोस्तों, आप सुन रहे आकाशवाणी कोलकाता का संचयता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो दोस्तों, जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
1: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। सरकार ने सिक्किम में रंगपो और रानीपुल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के विकास के लिए 993.64 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस परियोजना के तहत इस मार्ग को पक्के किनारे वाले 2 लेन के राजमार्ग में उन्नत किया जाएगा। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवॉकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और कई ड्रोन दागे। यूक्रेन में कल हुए इस हमले से 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा की है। आज भारतीय वायुसेना दिवस है। इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर कल आकाशवाणी से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है।
2: परफॉर्मेंस इन ऑपरेशन सिंदूर।
3: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के प्रदर्शन ने हमें गौरव से भर दिया है। हमने दुनिया को दिखाया है कि कैसे वायु शक्ति का उपयोग कर कुछ ही दिनों में निर्णायक सैन्य परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साहसिक और सटीक हमलों ने राष्ट्र को उसकी ताकत और हवाई शक्ति के आक्रामक इस्तेमाल के महत्व को दिखाया है।
0: त्योहारों के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो

चले आओ मेरे हमदम, मेरी दुनिया अधूरी है। चले आओ मेरे हमदम, मेरी दुनिया अधूरी है। हुजूमे दर्द से थक कर तुझे दिल ने पुकारा है। दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए चले आएँ, क्योंकि वक्त हो चला है आज के आईने का। मौजू सामीन, आज हम ऐसे दो मौजूआत का ज़िक्र करेंगे जिससे आपकी जानकारी में यकीनन कुछ इजाफा होगा। हिंदुस्तानी फिजाइया का दिन, आइए आज हम बातें करेंगे उनकी शुजात, हौसले और हिम्मत की, जिनकी वजह से आज हम इस ख़ास दिन को मना रहे हैं। मौजूद सामिन, आज 8 अक्टूबर है और आज हम हिंदुस्तानी फिजाइया का दिन बतौर जश्न मना रहे हैं। ये दिन कौमी सलामती में फ़ोर्स के अहम किरदार और इसकी तारीखी खिदमात का एतराफ़ करता है। जहाँ तक हिंदुस्तानी फिजाइया का ताल्लुक है तो यह 8 अक्टूबर 1932 को बरतानवी दौर में कायम की गई थी। इसी के साथ चंद बातें इसके तारीखी पस मंज़र की। आज़ादी से कबल इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था, जिसे 1950 में जमहूरिया हिंद के क़याम के अमल के बाद सिर्फ इंडियन एयरफोर्स यानी हिंदुस्तानी फिजाइया कहलाया। इस सिलसिले में एक दिलचस्प बात का जिक्र करना चाहूँगा कि महज 6 पायलटों के साथ इस एयरफोर्स का क़याम अमल में आया था, जो आज

ताकतवर तरीन फजाई अफवाज में शामिल है। और अब चंद बातें बसारत का आलमी दिन से मुतालिक यानी वर्ल्ड साइट डे की। आंखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को, अनजान हैं हम तुम अगर अनजान हैं आंखें, लब कुछ भी कहे इससे हकीकत नहीं खुलती, इंसान की सच झूठ की पहचान है आंखें। जी हाँ, आंखों के ताल्लुक से साहिर लुधियानवी का ये दावा 100% दुरुस्त है। और दोस्तों, बात जब आंखों की हो रही है तो ये भी जान लें कि ये जिक्र बेमहल नहीं। अंजुमन के सभी सुनने वालों से कहता चलूं कि आज 8 अक्टूबर है, दुनिया भर में बसारत का आलमी दिन यानी वर्ल्ड साइट डे मनाया जा रहा है। क्यों ये दिन हमारे लिए ख़ास है, इसके अगराज और मकासद क्या हैं, बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, बसारत का आलमी दिन हर साल अक्टूबर के दूसरी जुमेरात को मनाया जाता है। इसका मकसद बसारत से महरूमी के वजूहात और बिनाई की कमी, आंखों की मुख्तलिफ़ बीमारियां और इनकी देखभाल से मुतालिक आगाही फैलाना है। दुनिया भर में हर साल लोगों की एक बड़ी तादाद गफलत, हादसे या दिगर किसी बीमारी की वजह से अंधेपन का शिकार हो जाते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि इसकी रोकथाम को मुमकिन बनाया जा सके। इसका आगाज़ लाइन्स क्लब इंटरनेशनल ने किया था। इससे कबल बैनुल अक्वामी अंधेपन की एजेंसी ने आलमी दिन सेहत की मदद से 18 फरवरी 1999 को विज़न 2020 का आगाज़ किया था, ताकि आँखों की बेहतर देखभाल मुमकिन हो सके और लोगों को बिनाई की कमी जैसे मसाइल और इनके इलाज को यकीनी बनाया जा सके। ख़ास तौर पर मोतियाबिंद, ट्राइकोमा, कम बिनाई, क्रोनेल, ग्लूकोमा जैसे बीमारियों की रोकथाम और इलाज से मुतालिक आगाही मुहिम चलाई जाए। इसलिए दोस्तों, 40 की उम्र पार करते ही हर किसी को अपने आँखों की जाँच ज़रूरी से करवानी चाहिए, क्योंकि ये वो वक्त है जब बिनाई में कमज़ोरी आती है। आखिर में ये भी कहता चलूं कि इसकी देखभाल के लिए अच्छी ग़िज़ा, जिस्मानी सफाई और वर्जिश लाजमी है। तो दोस्तों, अभी आप कुदरत के इस अजीम नेमत आँखों के ताल्लुक से बसारत के आलमी दिन पर कुछ बातें गोश गुजार कर रहे थे। और एक और ख़बर से आपको आशना कराना चाहूँगा कि मशहूर बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर अब हमारे दरमियान नहीं रहे। 75 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। इसी के साथ अब घड़ी कह रही है 10:21 और 34 सेकेंड, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता की उर्दू पेशकश अंजुमन सरफराज के साथ। दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है साज़े दिल खामोश में एक सोज जगाने का। तो सुनते हैं प्रोग्राम गज़ल उसने छेड़ी। प्रोग्राम का आगाज़ जगजीत सिंह की आवाज़ में इब्न इंशा का कलाम

दोस्तों इनका दीदार हो जाए तो रात ही क्या दिन भी गुलजार है। जी हाँ, आपका इस बारे में क्या कहना है ज़रूर बताएं। कहते हैं कि हर शाम कहते हो कल शाम मिलेंगे, हर शाम कहते हो कल शाम मिलेंगे, क्यों आती नहीं वो शाम जिस शाम मिलेंगे। यूँ अच्छा नहीं लगता ये शामों का बदलना, कल शाम भी कहा था कि कल शाम मिलेंगे। तो दोस्तों आइए इसी मुलाकात को और आगे बढ़ाते हुए पंकज उदास की आवाज़ में काबिल अजमेरी का कलाम सुनते हैं।

दोस्तों, जो हकीकत है वो हकीकत है, आप माने ना माने। इश्क हर कुछ मनवा लेती है, आपकी मर्ज़ी हो या ना हो। और इसी पाक जज्बे का नाम ही तो उल्फत है, जिसके बगैर हम जी नहीं सकते। कहते हैं कि मुझको तो होश नहीं तुमको खबर हो शायद, मुझको तो होश नहीं तुमको खबर हो शायद, लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया। इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया है बर्बाद, इसका रोना है बड़ी देर से बर्बाद किया। मसरूर अनवर का कलाम है, तलत अजीज़ की आवाज़ में, आइए सुनते हैं।

भाई किसने कह दिया कि प्यार करना गुनाह है? किसी ने खूब कहा है कि अगर पाक जज्बे के साथ आप कुछ करते हैं तो वो नेकी में शुमार होता है, इबादत में शामिल है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? है याद मुलाकात की वो शाम अभी तक, मैं तुझको भुलाने में हूँ नाकाम अभी तक। है याद मुलाकात की वो शाम अभी तक, मैं तुझको भुलाने में हूँ नाकाम अभी तक। आ तुझको दिखाऊं कि तेरे बाद सितमगर वीरान पड़े हैं ये दरो बाम अभी तक। पर दोस्तों हमारे पास और भी खुशी के सौगात हैं, तो आइए सुनवाते हैं अनुराधा पुडवाल और चंदन दास की आवाज़ों में प्याम सईदी का एक और खूबसूरत सा कलाम।

यही दिल था कि तड़पता था मरासिम के लिए, अब यही तर्क ताल्लुक के बहाने मांगे। तभी तो कहते हैं दोस्तों कि ये लम्हे इश्क व मस्ती के सदा पाबंद नहीं रहते, ये लम्हे इश्क व मस्ती के सदा पाबंद नहीं रहते, सदा खुशियां नहीं रहती, हमेशा गम नहीं रहते। दोस्तों अब स्टूडियो की घड़ी में सुबह 10:50 हो रहे हैं और अब वक्त हो चला है एक और खूबसूरत से प्रोग्राम का। दोस्तों खालिक कायनात ने बेशुमार चीज़ें पैदा की हैं और ये सभी चीज़ें किसी न किसी तरह से हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। आकाशवाणी कोलकाता की आज की ये खसूसी पेशकश तख्लीक कुदरत इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज आप वाटरमेलन यानी तरबूज के बारे में मुफीद बातें समात फरमाएंगे। दोस्तों तरबूज एक फल ही नहीं बल्कि इसके बेशुमार तिब्बी फ़वाद भी हैं। क्या वो फ़वाद हैं आज के इस खसूसी पेशकश में। गर्मी के मौसम का आगाज़ होते ही हर जगह तरबूज नज़र आने लगता है। ये फल बाज़ार से नहायत सस्ते दामों में दस्तयाब है। इससे बेशुमार तिब्बी फ़वाद हासिल किए जाते हैं। इसको अगर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन का मसला लाहक नहीं होता। तिब्बी माहरीन के मुताबिक तरबूज वो फल है जिसमें 92% तक पानी पाया जाता है, जबकि इंसानी सेहत के लिए ये बेहद मुफीद है। इसके अलावा तरबूज के गजाई अज़ा भी सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित होते हैं। इन गजाई अज़ा में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन सी, पोटाशियम और मैग्नीशियम शामिल है। इसके साथ साथ 100 ग्राम तरबूज में 30 कैलोरीज, 91% पानी, आधा ग्राम प्रोटीन, 7.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 6 ग्राम शुगर, आधा ग्राम फाइबर और थोड़ी सी मकदार में फैट भी शामिल है इसमें। तरबूज की शक्ल आमतौर पर गोल होती है जबकि इसके एक किस्म लंबूतरी टाइप की भी है। इसका छिलका कदरे सख्त होता है और गुदा नहायत नर्म। आइए जानते हैं इसके फ़वाद क्या हैं। हाजमे को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है, पट्ठों की सेहत में बेहतरी लाता है, हामला खातिन के लिए भी मुफीद है, जिस्म में नमकियात की मतवाजन मकदार को रखता है, पेट की चर्बी ख़त्म करने में मददगार है, दमे की इलामत में कमी लाता है। तरबूज के बीज प्रोटीन का बेहतरीन जरिया है, हड्डियों की मजबूती में भी इजाफा करता है, साथ ही हीट स्ट्रोक से बचाने में भी मददगार है, बिनाई के लिए मुफीद है, इन्फेक्शन से बचाव में मददगार है। और तरबूज के फवाद का जहाँ तक ताल्लुक है तो अगर गर्मी के मौसम में बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसके बेहद फ़ायदे हैं। पहला ये कि हाजमे को बेहतर बनाने में ये मददगार है। तरबूज भी मीठे दाने की तरह हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है, क्योंकि इसमें पानी की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा तरबूज में फाइबर भी काफ़ी मकदार में पाया जाता है जो हाजमे की कारकर्दगी को बढ़ाता है और कब्ज़ की इलामत में

जो है इससे दूर होता है। पट्ठों की सेहत में बेहतरी, एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक तरबूज में ऐसे अज्ज़ा पाए जाते हैं जो खून की गर्दिश को बेहतर बनाते हैं। ऐसे खिलाड़ी जो बहुत ज़्यादा वर्जिश करते हैं या जिस्मानी तौर पर हद से ज़्यादा अफ़ाल होते हैं तो उनमें खून की गर्दिश मुतासिर हो सकती है, जिसकी वजह से पट्ठों के मसाइल लाहक हो सकते हैं। तरबूज का बाकायदगी से इस्तेमाल ऐसे खिलाड़ियों के लिए नहायत मुफीद है। इसके अलावा तरबूज के इस्तेमाल से जिस्मानी दर्द और तकलीफ़ की लामत में भी कमी आती है। अगर आप गर्मी के मौसम में जिस्मानी तकालीफ का शिकार हैं तो बाकायदगी के साथ तरबूज का इस्तेमाल शुरू करें, क्योंकि ये कुदरती दवा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। हमला ख्वातीन के लिए ये किस हद तक कारगर है, आइए बताते हैं कि हमल के दौरान अक्सर ख्वातीन को सीने की जलन का सामना करना पड़ता है। तरबूज हमल के दौरान सीने की जलन की शिकायत को कम करता है। इसी के साथ इस फल में ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमल की तीसरी छमाही के दौरान पट्ठों की तकलीफ़ से बचाने में भी मदद देता है। जिसमें नमकियात की मतवाजन मकदार को बरकरार रखता है। गर्मी के मौसम पसीना ज़्यादा आने की वजह से पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सख्त गर्मी के मौसम में ज़्यादा मकदार में पानी पीने के बावजूद भी जिसमें पानी और नमकियात की कमी वाक़ हो सकती है। ताहम तिब्बी माहरीन के मुताबिक तरबूज में ऐसे अज़ा पाए जाते हैं जो न सिर्फ जिसमें पानी की कमी को दूर करता है बल्कि जिसमें नमकियात के मकदार को भी मतवाजन रखते हैं, पेट की चर्बी को ख़त्म करता है। तरबूज भी इलायची की तरह पेट की चर्बी को ख़त्म करने के लिए मुफीद समझा जाता है। इस फल में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड जिसमें मौजूद इजाफी कैलोरीज को जलाते हैं। तरबूज को ख़ास तौर पर बढ़ते हुए तोन से छुटकारा पाने के लिए भी बाकायदगी के साथ इस्तेमाल में लाते हैं। इसके अलावा मोटापे से छुटकारा पाने के लिए तरबूज के जूस को भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद सेल्स जिसमें चर्बी बनने के अमल को रोकते हैं। दमा की अलामत में ये बेहद कारगर है। तरबूज में मौजूद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद एंटी ऑक्सीडेंट लाइकोपिन जिस्म को फ्लोर और इन्फ्लुएंजा जुकाम से लड़ने में मदद पहुंचाते हैं। तरबूज वो फल है जिसके बीज भी गजाई अज़ा से मालामाल हैं जो सेहत पर तिब्बी फवायद जाहिर करते हैं। इसके अलावा तरबूज के बीज प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया होते हैं। जो लोग दूसरी गजाओं से प्रोटीन हासिल नहीं कर पाते वो तरबूज के बीज के को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरबूज में ऐसे भी चीज़ें पाई जाती हैं, खसूसियात पाई जाती हैं जो हड्डियों को मजबूती फराहम करते हैं। इसके अलावा अगर तरबूज को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो हड्डियों के मुख्तलिफ मसाइल जैसे कि हड्डियों के भुरभुरेपन के खतरात में भी कमी आती है। तरबूज के इस्तेमाल से हड्डियाँ मजबूत होने से पट्ठों की मजबूती में भी इजाफा होता है, हीट स्ट्रोक से भी बचाते हैं। तरबूज चूँकि गर्मी के मौसम का फल है और इसमें पानी भी वाफर मकदार में पाया जाता है, इसलिए ये हीट स्ट्रोक से बचने में भी मददगार साबित होते हैं। गर्मी के मौसम में बाज़ औकात जिसमें जलन का भी सामना करना पड़ता है और ये फल गर्मी की वजह से जिस्मानी जलन को भी ख़त्म करता है। बिनाई के लिए भी मुफीद है। इस फल में लाइकोपिन नामी एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बिनाई की हिफाजत करता है और आँखों की को सूजिश जैसी बीमारी से बचाता है। तिब्बी माहरीन के मुताबिक उम्र में इजाफे की वजह से बिनाई कमज़ोर होना शुरू होती है तो तरबूज का बाकायदा इस्तेमाल बिनाई को बेहतर बनाता है और दिमाग को भी क़ुव्वत फराहम करता है। ये इन्फेक्शन से बचाता है। कहते हैं कि इस फल में पाए जाने वाले मुख्तलिफ एंटी ऑक्सीडेंट और विटामिन जिसमें पैदा होने वाली इन्फेक्शन को बरवक्त खात्मा करता है। तरबूज के और भी बहुत सारे फवायद हैं लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी कोलकाता की पेशकश तख्लीक कुदरत में तरबूज के ताल्लुक से मुफीद बातें। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:58 और 28 सेकंड हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता की उर्दू पेशकश अंजुमन अपने मेज़बान सरफराज के साथ। इसी के साथ अपने मेज़बान सरफराज को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी आइंदा किसी प्रोग्राम में।

आप सुन रहे आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर था 1008 किलो हर्ट्ज पर और ये प्रसारण आप सुन पा रहे न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो दोस्तों सुरभि कार्यक्रम के अंतर्गत अब हम चलते हैं चर्चा की ओर। चर्चा में आज हम बात करेंगे हमारे देश की सुरक्षा और हमारे वीर जवानों से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय की। सशस्त्र सेना दिवस हम उन बहादुर सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है जो देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कठिन परिस्थितियों में भी नागरिकों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भारतीय सशस्त्र सेना में थल सेना, नौसेना और वायु सेना शामिल है। हमारे सैनिक कठिन मौसम, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और अनेक चुनौतियों के बीच अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। उनकी सेवा केवल सीमा की रक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव कार्यों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सेना दिवस हमें यह याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा के पीछे हमारे सैनिकों का त्याग, अनुशासन, साहस और समर्पण है। यह दिन उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने और उनके योगदान को समझने का अवसर है। तो आइए हम अपने आज के दिन के जवानों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करें और उनके साहस एवं सेवा भावना को नमन करें। तो दोस्तों कार्यक्रम चर्चा में है, हाँ आज हम दूसरे एक विषय पर और भी बात करना चाहेंगे जिसका संबंध हम सभी के जीवन से है, यानी कि दूसरा जो विषय है वो है हमारी आँखों और हमारी दृष्टि से, विश्व दृष्टि दिवस। जी हाँ, आज हम विश्व दृष्टि दिवस मना रहे हैं और ये हर वर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य आँखों की देखभाल और दृष्टि संबंधी समस्याओं के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। आँखें हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। पढ़ने, लिखने, काम करने, यात्रा करने और अपने आसपास की दुनिया को देखने के लिए स्वस्थ दृष्टि आवश्यक है, लेकिन आँखों की कई समस्याओं की समय पर पहचान और उचित उपचार ना होने पर दृष्टि प्रभावित हो सकती है। इसलिए नियमित रूप से आँखों की जांच कराना, आँखों में किसी तरह की परेशानी होने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना और अपनी आँखों की उचित देखभाल करना बहुत जरूरी है। बच्चों और बुजुर्गों की दृष्टि पर हमेशा ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। विश्व दृष्टि दिवस हमें यह संदेश देता है कि आँखों की सेहत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जागरूकता, समय पर और साथ ही साथ जांच और उचित उपचार के माध्यम से दृष्टि संबंधी कई समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है। तो आइए आज विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर अपनी आँखों की देखभाल का संकल्प लें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। तो दोस्तों आज हमने सुरभि कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा है में एयरफोर्स डे और वर्ल्ड साइट डे के विषय में बातें की।

तो दोस्तों सुरभि कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब बढ़ते हैं पहल की ओर। पहल में आज हम बात एक ऐसी सरकारी पहल की करेंगे जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसका नाम है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम NMDFC की स्थापना 30 सितंबर सन 1994 को हुई थी और यह वर्तमान में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक और विकास संबंधी अवसरों को बढ़ावा देना है। NMDFC के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को रियायती दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ साथ शिक्षा, स्वरोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इसके प्रमुख वित्तीय कार्यक्रमों में टर्म लोन, शिक्षा ऋण और माइक्रो फाइनेंस शामिल है। टर्म लोन के माध्यम से व्यावसायिक रूप से व्यवहार आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं शिक्षा ऋण का उद्देश्य पात्र अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को रोजगार परक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है और माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से विशेष रूप से छोटे स्तर पर काम करने वाले लोगों और अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है। इन योजनाओं को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नामित यानी कि राज्य स्तरीय चैनलाइजिंग एजेंसियों तथा कुछ मामलों में अन्य अधिकृत माध्यमों से लागू किया जाता है। NMDFC केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी इसके अंतर्गत कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि लाभार्थी अपनी क्षमता विकास कर रोजगार या स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सके। इस प्रकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम का उद्देश्य वित्तीय सहायता, शिक्षा, कौशल और स्वरोजगार के माध्यम से पात्र अल्पसंख्यक समुदायों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का और बढ़ाने का अवसर उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों ये थी आज की पहल, जहां जानकारी का उद्देश्य है योजनाओं को समझना और उनके लाभ तक सही तरीके से पहुंचने के रास्ते को जानना। तो दोस्तों सुरभि कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो दोस्तों जाते जाते आप सभी के लिए अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ।

0: come to the end of this program.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। उन्होंने कहा कि इस मंच ने दूरसंचार क्षेत्र में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने की सुविधा दी है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रसार तभी हो सकता है जब वो किफायती और समावेशी हो। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने आगामी 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 में महत्वाकांक्षी और संतुलित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन, व्यावहारिक दृष्टिकोण और आपसी सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया है। सम्मेलन से पहले फिजी में आयोजित एक बैठक के दौरान राजनीतिक समझौते के संभावित क्षेत्र और परिणाम विषय पर पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के मद्देनजर अब केवल बयानबाजी से आगे बढ़कर कार्रवाई और आपसी सहमति की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायु शक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 883 अंक गिरकर 71,756 पर और निफ्टी 308 अंक कम होकर 22,295 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया, कहा पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छुपा नहीं सकता। और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है।
1: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक लोगों को पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार ऑपरेटरों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रटर्निटी ने करके दिखाया है वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
0: इस आयोजन में दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों, नेतृत्व निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक मंच पर लाया गया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मंत्री DK शिवकुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक AI की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने AI को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

0: एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों की राय और सुझाव पर विचार करेगी, साथ ही ये देखेगी कि क्या दवा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए किसी वैधानिक ढांचे की जरूरत है या नहीं, और यदि है तो उसकी संरचना

0: पर एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने पिछले कुछ दिन में रियाद के अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इसमें आम नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास की जानकारी दे रहे हैं।
3: जलियांवाला बाग का जिक्र होते ही वर्ष 1919 में अमृतसर में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जुल्म की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। वह 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर ने अपने सैनिकों से सैकड़ों बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर उन्हें मार डाला था। ये लोग रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस समय इन शहीदों की याद में बने जलियांवाला बाग यादगार को दशकों बाद पुनर्विकसित कर 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स में विकास के कई काम हुए। पंजाब की अपनी भवन निर्माण शैली के अनुसार इसकी विरासत बहाली का काम बहुत ध्यान से किया गया। उस वक्त पंजाब में घटित ऐतिहासिक अहमियत की घटनाओं को दिखाने के लिए 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गईं और एक साउंड एंड लाइट शो शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से इस यादगार को देखने और नतमस्तक होने आए सैलानियों ने इसके पुनर्विकास के काम की तारीफ की।
4: जो हमने किताबों में पढ़ा था वो मैंने आज यहाँ पे आकर के खुद ने अपनी आंखों से देखा और मुझे महसूस भी हो रहा है। गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत अच्छा किया है जिससे कि यहाँ पे सब कुछ युवा पीढ़ी है जो और आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो आगे आएंगे आने वाली पीढ़ी भी देखेगी यहाँ पे कि पहले कैसे हुआ था और क्या हुआ था। गवर्नमेंट इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
5: मैं बहुत टाइम पहले आई थी उसमें लेके और अब से बहुत काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले ये मेंटेन नहीं था, काफी अच्छे से मेंटेन किया गया और यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है यहाँ पे। इवनिंग में लाइटनिंग भी होती है, पूरा हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ पहले और क्या क्या चेंजेस अभी आए हैं। आने वाली पीढ़ी जो आगे आ रही है जनरेशन, उनको इसके बारे में काफी अच्छे से डीपली पता चलेगा।
6: मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है, मैं वाराणसी से आया हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में सुना हुआ था अपने दादा परदादा के मुंह से, बट आज हमने ये कुछ चीजें आके यहाँ पे वो देखे कि जैसे लगा कि हमने मतलब अपने मिट्टी से जुड़े हुए सब चीजें हमको यहाँ पे मिला और काफी चीजें देख को हमको ये लगा कि उस समय जो हुआ था हमारे यहाँ के गवर्नमेंट सरकार ने ऐसा कुछ किया कि ये चीजें देख के जाने के बाद हम अपने अगली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि एक बार वो यहाँ पे आए जरूर।
3: जलियांवाला बाग मेमोरियल को आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीयों के बलिदान की निशानी के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे।
1: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
2: विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है, उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा में हुआ था। नाना पाटेकर उन कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे।
3: आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
2: 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्निसाक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1978 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5, ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज शाम 4 बजे पुणे के पास डोंजे में अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंचे। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी कोलकाता अनुष्ठान सुनछेन সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। এখন শুরু হচ্ছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান। শুনবেন মত্ত তালে তবলা, শিল্পী হিন্দুল মজুমদার। শিল্পীকে হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেছেন সনাতন গোস্বামী।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
1: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री

0: डीके शिव कुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भाग ले रहे हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा जारी है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनर्जीवन पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगा कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनर्जीवन में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए सीआर पाटिल ने कहा कि नदी पुनर्जीवन के लिए प्रदूषण नियंत्रण से परे जाकर जल उपलब्धता, पारिस्थितिकी स्वास्थ्य, भूजल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास और सामुदायिक भागीदारी को सहमति करने पर एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठन करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11/2008 के मुंबई और पहलगाम आतंकी हमले को नहीं भूली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। आर्किटेक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान की रिको गुंजी को हराया। हालांकि तन्वी शर्मा को महिला और थरुण मन्नेपल्ली को पुरुष सिंगल्स में हार का सामना करना पड़ा। पारादीप तट पर सरेक्स 26 समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि ने आज पारदीपी तट के 12वें राष्ट्रीय सुरक्षा खोज और बचाव अभ्यास सरेक 26 का अवलोकन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi has said the platform of Indian Mobile Congress has played an important role in the country's progress in the telecom sector and digital connectivity. Mr. Modi highlighted that over the years, it has emerged as a platform showcasing India's progress and its aspirations. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today. Mr. Modi said, today 5G connectivity has reached every district in the country. He said that the government is now working to connect around 25 crore students through various digital and online education platforms.
2: 2022 mein, isi month se humne desh mein 5G ki shuruaat ki thi. Phir 2023 mein maine bataya tha ki Bharat kaise 5G rollout se 5G रीच आउट की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज हम सभी देख रहे हैं देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन भारत में हैं जहां से 5G नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है और मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2022 की तुलना में 10 गुना बड़ी है।
1: Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav today said that a consultation paper on the future regulation of artificial intelligence will be floated within the next month. Mr. Vaishnav was speaking to media after releasing the World Development Report 2026, The Promise of Artificial Intelligence. Mr. Vaishnav said the proposed consultation paper will focus on AI safety, cybersecurity, benefits and potential harms. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said that India recorded exports worth $863 billion last year and aims to export $1 trillion this year. The minister said this while addressing the curtain raiser of the 31st CII Partnership Summit in New Delhi. The summit will be held in Visakhapatnam on the 12th and 13th of the next month. Mr. Goyal said that the growth represents nearly 16% growth in a year,

आकाशवाणी कोलकाता का यह संचयिता चैनल है जिसे आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। इसे आप डिजिटल मोड के साथ साथ न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त तो चला है 5:21:42। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी अपनी दोस्त प्रीति के साथ। उर्वशी कार्यक्रम में आज का सेगमेंट है उड़ान। उड़ान में आज हम बात करेंगे जी हाँ, जिनके बारे में बात करेंगे उनके बारे में बताने से पहले हम कहें आपसे कि कुछ आवाज़ें कानों तक पहुंचती हैं और कुछ सीधे दिल के उस कोने में उतर जाती है जहाँ हमारी सबसे पुरानी यादें, अधूरी इच्छाएं और अनकहे जज्बात छिपे होते हैं। ज़रा सोचिए, एक महफिल सजी है, सामने बैठे लोग खामोश हैं, ना कोई शोर, ना कोई तालियों की जल्दबाजी, तभी एक आवाज़

आवाज उठती है, धीमी ठहरी हुई, दर्द में डूबी हुई, और देखते ही देखते हर सुनने वाला उस आवाज में अपना कोई भूला हुआ किस्सा तलाशने लगता है। यह आवाज बेगम अख्तर की। जी हाँ, आज के कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं उन फनकारा को जिसने गजल को केवल गाया नहीं बल्कि उसे जी कर सुनाया। वह आवाज जिस

उड़ान कार्यक्रम में बात हो रही है बेगम अख्तर की। बेगम अख्तर का असली नाम अख्तरी बाई फैज़ाबादी था। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में हुआ था। बचपन से ही संगीत उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। उन्होंने संगीत की बाकायदा तालीम हासिल की और उस्तादों के मार्गदर्शन में अपनी आवाज़ को तराशा। पटियाला और किराना घरानों की संगीत परंपराओं से मिली शिक्षा ने उनकी गायकों की गहराई प्रदान की, लेकिन उनकी असली पहचान केवल उनकी सुरीली आवाज़ नहीं थी। उनकी पहचान थी शब्दों के अर्थ को समझना, हर मिसरे के पीछे छिपे भाव को महसूस करना और उसे इस तरह पेश करना कि सुनने वाला भी उस एहसास का हिस्सा बन जाए। उस दौर में महिलाओं के लिए सार्वजनिक मंचों पर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना आसान नहीं था, फिर भी अख्तरी बाई ने संगीत की दुनिया में अपनी जगह बनाई। उन्होंने ठुमरी, दादरा और गजल तीनों विधाओं में अपनी विशिष्ट शैली विकसित की। बाद में वह बेगम अख्तर के नाम से मशहूर हुई और हिंदुस्तानी संगीत की एक ऐसी पहचान बनी जिसे आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है।

वक्त तो चला है 5:34 और 56 सेकेंड। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल कार्यक्रम उर्वशी में। सुन रहे हैं अपनी दोस्त प्रीति को, और प्रीति आज सुना रही है बेगम अख्तर के बारे में, आप सभी को बता रही है। गज़ल की खूबसूरती यह है कि उसके दो मिसरों में पूरी ज़िंदगी समा जाती है। कभी एक मुलाकात, कभी एक इंतज़ार, कभी कोई शिकवा, और कभी किसी के चले जाने के बाद बची हुई खामोशी। बेगम अख्तर की गायकी में यही खासियत थी। वह शब्दों को जल्दी जल्दी पार नहीं करती थी, वह हर शब्द को ठहरने का समय देती थी। उनकी आवाज़ में एक ऐसा दर्द था जो बनावटी नहीं लगता था। ऐसा महसूस होता था कि मानो गाने वाला केवल शेर नहीं पढ़ रहा, बल्कि अपने अनुभवों को कोई बंद किताब खोल रहा है। उनकी सबसे प्रसिद्ध प्रस्तुतियों में से एक है ए मोहब्बत तेरी अंजाम पे रोना आया। इस गज़ल को शकील बदायनी ने लिखा था, और इसके शब्दों में मोहब्बत के अंजाम पर उठने वाले सवाल है। क्या प्रेम की सबसे बड़ी कसौटी उसका मिलना है या उसका अधूरा रह जाना भी प्रेम की कहानी का एक हिस्सा है। चलिए सुनते हैं इसी गीत को।

अभी आप सुन रहे थे बेगम अख्तर की आवाज़ में इस खूबसूरत सी गज़ल को। एक ऐसी आवाज़ जिसमें दर्द है मगर उस दर्द को जताने की जल्दबाजी नहीं। बेगम अख्तर को केवल गज़ल की महफिलों तक सीमित करके देखना उनके संगीत सफ़र के एक महत्वपूर्ण अध्याय को छोड़ देना जैसा होगा। उन्होंने अपनी शुरुआती वर्षों में फिल्मों में अभिनय भी किया, फिल्मों के लिए गाया भी, और उस दौर में गायिका का स्वयं पर्दे पर आकर गाना आम बात थी। उनकी फिल्मी यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी 1942 की फिल्म रोटी, जिसका संगीत अनिल विश्वास ने लिखा था। इस फिल्म के लिए बेगम अख्तर ने कई गीत और गजलें गाई, जिसमें शामिल है फिर फसलें बहार आई, रहने लगा है दिल में अंधेरा तेरे बगैर, चार दिनों की जवानी, उलझ गए नैनवा। और इन रचनाओं में उस समय की फिल्मी संगीत और उनकी विशिष्ट शास्त्रीय गायकी का भी मेल सुनाई देता है। फिल्मी गीतों में उनकी आवाज़ की अपनी पहचान बनी रहती है और यह गीत की परिस्थिति के अनुसार गाती है, लेकिन उनकी गायकी की आत्मीयता कहीं खोती नहीं। इसके बाद 1945 की फिल्म पन्नादाई में उनका गीत फसले गुल आई हमें याद तेरी सताने लगी सुनने को मिलता है। 1953 की फिल्म दाना पानी के लिए उन्होंने ए इश्क मुझे और तो कुछ याद नहीं गाया। इस फिल्म का संगीत मोहन जूनियर यानी मदन मोहन से संबंध था। फिर आई फिल्म 1954 की फिल्म एहसान के लिए उनका एक गीत रिकॉर्ड हुआ था, हालांकि उसके रिलीज होने को लेकर कुछ सूची में स्पष्ट अंतर मिलता है। और इस तरह फिल्मी संगीत से उनका रिश्ता भी उल्लेखनीय रहा, मगर उनकी सबसे स्थायी पहचान रही गजल की वह गायकी, जिसे किसी फिल्मी दृश्य या कहानी की आवश्यकता नहीं थी, केवल आवाज और शब्द ही श्रोता को बांध लाने के लिए, या कि यूं कहें बांध लेने के लिए पर्याप्त थे।

0: वक्त उछला है 5:48 और 17 सेकेंड। बात हो रही है बेगम अख्तर की। जी हाँ, अगर बेगम अख्तर की गायकी की चर्चा हो और साथ में मिर्ज़ा गालिब का नाम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। गालिब की शायरी में प्रेम के साथ दर्शन है, शिकायत के साथ आत्मचिंतन और उम्मीद के साथ एक गहरी बेचैनी भी। बेगम अख्तर ने गालिब के कई अशार को अपने आवाज़ में प्रस्तुत किया। उनकी गायकी में शेर का अर्थ केवल शब्दों से नहीं बल्कि सुर, विराम और भाव से भी खुलता है। उनकी प्रस्तुतियों में आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, या फिर कहें यह नति हमारी किस्मत की विसाल यार होता, जैसे रचनाएं विशेष रूप से याद की जाती है। एक माँ समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ कि बेगम अख्तर की मानता केवल इस बात में नहीं थी कि उन्होंने अच्छे शेर चुने। उनकी विशेषता यह थी कि वह शेर के भीतर मौजूद भावनात्मक उतार चढ़ाव को संगीत में ढाल देती थी। उनकी आवाज़ सुनते हुए कभी लगता था कि कोई अपने बीते दिनों को याद कर रहा है, तो कभी ऐसा कि बरसों से मन में दबा हुआ सवाल आखिरकार कह पा रहा है। उन्हें पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया। उनकी कला का सम्मान इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने ठुमरी, दादरा और गज़ल जैसी विधाओं को व्यापक श्रोताओं के तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल पर ही बेगम अख्तर की आवाज़ में आइए सुनते हैं इस गीत को।
1: बनी आदम को मुसलमान हो या हिंदू या नसरानी, अजीज रखता हूँ और अपना भाई गिनता हूँ, दूसरा माने या ना माने। अंग्रेजों की कौम में जो उन रूसिया कालों के हाथों कत्ल हुए, उनमें कोई मेरा उम्मीदगाह था और कोई मेरा शफीक, कोई मेरा दोस्त था और कोई मेरा शागिर्द। हिंदुस्तानियों में कुछ दोस्त, कुछ अजीज, कुछ शागिर्द, कुछ माशूक, सो वो सब के सब खाक में मिल गए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जुर्माने और कार्यवास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया गया है। कर फाइलिंग में देरी, गलती या भुगतान करने में विलंब करने वाले करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
1: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रिकमेंडेड।
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
3: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं। 4 दिन का सम्मेलन कल शुरू हुआ। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज एक संस्थान में श्री मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये शिखर सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। इलेक्ट्रॉनिक्स

0: सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष 863 अरब डॉलर का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही। ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवम्बर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनरुद्धार के लिए कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सकों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य लाभों सहित औषधि कंपनियों की विपणन प्रणालियों के वैधानिक नियमन की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपेली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। The GST Council has removed power of arrest of tax officers and has raised the threshold for prosecution from 1 crore rupees to 5 crore rupees. The decision was taken during the 57th meeting of the council in New Delhi today. The punishment, whether fine or imprisonment or both, has been left to judicial discretion in every case. A taxpayer who files late, makes a mistake or fails behind on payment will face recovery, interest and a proportionate penalty. Addressing media following the meeting this evening, Finance Minister Nirmala Sitharaman said no rate changes has been made in GST Council meeting and the rate structure is settled.
2: GST Council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
1: Prime Minister Narendra Modi has said India's telecom sector is steadily moving towards greater self-reliance. He said the India Mobile Congress has played an important role in the country's progress in the telecom sector and digital connectivity. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today. Emphasizing the critical importance of telecom and digital technology, Mr. Modi said, stressed that phone and network security must remain a priority. He also highlighted the growing challenges of deep fakes and cyber fraud, called for the development of a global framework to tackle the threat.
3: Deep fakes kitni badi chunauti ban chuki hai, ye bhi hum dekh rahe hain. Isliye zaruri hai ki hum iske liye ek global framework par kaam kare. Sarkaren, technology companies, telecom operators, sabhi ko इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूँ, एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाए जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
1: Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav has said a consultation paper on the future regulation of artificial intelligence will be floated within the next month. Speaking to media after releasing the World Development Report 2026, the promise of an artificial intelligence today, Mr. Vaishnav said that the proposed consultation paper will focus on AI safety, cyber security, benefits and potential harms. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India recorded exports worth $863 billion last year and aims to achieve $1 trillion in exports this year. The minister said this while addressing the curtain.

आकाशवाणी कोलकाता का यह संचेता चैनल है जिसे आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर। इसे आप डिजिटल मोड के साथ साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त हो चला है 6:10 और 52 सेकेंड। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी वार्ता अपनी दोस्त प्रीति के साथ। हिंदी वार्ता में आज का विषय है भारतीय वायुसेना, साहस, सेवा और राष्ट्रीय सुरक्षा। आसमान को देखकर हम अक्सर सोचते हैं कितना विशाल है यह आकाश, कितने अनगिनत सपने समेटे हुए हैं अपने भीतर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसी खुले आकाश की ऊंचाइयों में हमारी आंखों से बहुत दूर कुछ लोग हर पल इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, हमारे शहरों में शांति बनी रहे और हमारे नागरिक निश्चित होकर अपने सपनों को साकार कर सके। वे हैं भारतीय वायुसेना के वीर जवान। वे केवल आकाश में उड़ने वाले विमान नहीं उड़ाते बल्कि अपने साहस, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा से पूरे राष्ट्र का विश्वास भी अपने साथ लेकर उड़ते हैं। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम हिंदी वार्ता समर्पित है भारतीय वायुसेना को, उस शक्ति को जो आकाश की ऊंचाइयों से देश की सुरक्षा करती है, उस सेवा भावना को जो संकट की घड़ी में मानवता का हाथ थामती है और उस साहस को जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता।

भारतीय वायुसेना का इतिहास केवल विमानों, तकनीक और सैन्य अभियानों का इतिहास नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प की भी कहानी है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। शुरुआत में सीमित संसाधनों और छोटे बेड़े के कारण साथ अपनी यात्रा आरंभ करने वाले भारतीय वायुसेना आज

एक आधुनिक और सक्षम वायु शक्ति के रूप में विकसित हुई है। समय बदला, युद्ध की प्रकृति बदली, तकनीक ने नई ऊंचाइयां छुई और सुरक्षा की चुनौतियां भी अधिक जटिल होती गई। भारतीय वायुसेना ने इन सभी परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को निरंतर विकसित किया। आज लड़ाकू विमान, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर, रडार प्रणालियां, वायु रक्षा संसाधन और आधुनिक संचार तकनीक इसके कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन एक प्रश्न उठता है, क्या किसी वायुसेना की शक्ति केवल उसके विमानों की गति, उनकी मारक क्षमता या उसकी आधुनिक तकनीक से मापी जा सकती है? नहीं, किसी भी सैन्य शक्ति की वास्तविक क्षमता उसके प्रशिक्षित मानव संसाधन, निर्णय लेने की योग्यता, अनुशासन, आपसी समन्वय और संकट के समय परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करने की क्षमता में निहित होती है। एक आधुनिक विमान तभी प्रभावी होता है जब उसे उड़ाने वाला पायलट प्रशिक्षित हो, उसकी देखभाल करने वाले टेक्नीशियन सतर्क हो, संचार व्यवस्था सुचारू हो और पूरी टीम अपने दायित्व को समझती हो। अर्थात भारतीय वायुसेना की असली ताकत केवल आकाश में नहीं बल्कि उन असंख्य लोगों के परिश्रम में भी दिखाई देती है जो पर्दे के पीछे रहकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। साहस का अर्थ यह नहीं कि किसी व्यक्ति को भय का अनुभव भी न हो। वास्तविक साहस वह है जब व्यक्ति खतरे और कठिनाइयों को समझते हुए अपने प्रशिक्षण, विवेक और कर्तव्य के अनुसार आगे बढ़ता है। भारतीय वायुसेना के जवानों के लिए साहस जीवन का एक व्यवहारिक गुण है। कल्पना कीजिए, एक पायलट अपने विमान के कॉकपिट में बैठा और उसके सामने आकाश का विस्तार है। विमान की गति तेज है, परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और प्रत्येक निर्णय का महत्व अत्यधिक है। ऐसी स्थिति में केवल शारीरिक क्षमता पर्याप्त नहीं होती, मानसिक संतुलन, निर्णय लेने की क्षमता, तकनीकी ज्ञान और वर्षों का प्रशिक्षण भी उतना ही आवश्यक है। वायुसेना के पायलट कठिन मौसम, ऊंचाई, सीमित समय और जटिल परिचालन परिस्थितियों में काम करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उनका प्रत्येक अभ्यास एक उद्देश्य से जुड़ा होता है कि वास्तविक परिस्थिति में प्रतिक्रिया को अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी बनाना। और साहस केवल लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट तक सीमित नहीं है। विमान के इंजन और अन्य प्रणालियों की जांच करने वाले तकनीशियन, संचार व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारी, वायु रक्षा प्रणाली पर तैनात कर्मी और कठिन परिस्थितियों में राहत अभियान चलाने वाले दल, हर व्यक्ति अपने दायित्व के माध्यम से साहस का परिचय देता है। इतिहास में भारतीय वायुसेना ने अनेक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया है। 1965 और 1971 के युद्धों में वायुसेना ने देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर के अंतर्गत भारतीय वायुसेना ने कठिन पर्वतीय परिस्थितियों में अभियान संचालित किए। ऊंचे पहाड़, दुर्गम भूभाग और चुनौतीपूर्ण परिचालन परिस्थितियां, इन सबके बीच कार्य करने के लिए असाधारण प्रशिक्षण, समन्वय और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। इन घटनाओं से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि साहस केवल किसी एक क्षण में दिखाई देने वाला गुण नहीं है, यह लंबे अभ्यास, अनुशासन और निरंतर तैयारी से विकसित होता है।

भारतीय वायुसेना का परिचय केवल सैन्य अभियानों तक सीमित नहीं है, इसकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में भी दिखाई देती है। जब किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है, भूस्खलन होता है, भूकंप से जनजीवन प्रभावित होता है या दुर्गम इलाकों में लोग फंस जाते हैं, तब सड़क और सामान्य परिवहन के साधन बाधित हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वायुसेना के परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न केवल सीमाओं पर तैनात सैनिकों तक सीमित नहीं है। आज सुरक्षा का संबंध तकनीक, संचार, खुफिया जानकारी, साइबर प्रणालियों, अंतरिक्ष आधारित संसाधनों और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय से भी है। भारतीय वायुसेना इस व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम भारतीय वायुसेना की बात करते हैं तो हमारी कल्पना में अक्सर लड़ाकू विमान आकाश में करतब और वर्दी पहने वीर जवानों की तस्वीर उभरती है, लेकिन वायुसेना कर्मी के जीवन में भी अनुशासन और प्रशिक्षण के साथ साथ व्यक्तिगत त्याग भी जुड़ा होता है और कई बार उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। उनके परिवार भी इस जिम्मेदारी में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी होते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी वार्ता। हमारा आज का विषय था भारतीय वायुसेना, साहस, सेवा और राष्ट्रीय सुरक्षा।

0: पत्रं प्रस्तोष्यते इति सूचना प्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः। औषधविपणने पारदर्शितायै महती घोषणा। अनैतिकप्रचाराणां नियन्त्रणार्थं विशेषसमितेः रचनायै सर्वोच्चन्यायालयस्य समादेशः। साहित्यजगत्सु एन् कार्सन् महोदयायाः महती विजयगाथा। षड्विंशत्युत्तरद्विसहस्रतमस्य नोबेल् पुरस्कारेण विभूषिता भविष्यति केनडादेशस्य प्रख्याता कवयित्री। भारतीयचलचित्रजगतः सुप्रसिद्धः वरिष्ठ अभिनेता नाना पाटेकरः 75 वयसि दिवंगतः। अपि च आतंकवादविषये पाकिस्तानस्य छलनीतिः निरस्ता। आतंकी संरक्षणं छद्मवेषेण गोपयितुं न शक्यते इति भारतस्य स्पष्टः सन्देशः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नवदेहल्याः यशोभूमि सभागारे भारत मोबाइल कांग्रेस इति महोत्सवस्य दशम संस्करणम् उद्घाटयन् प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी न्यगादीत् यत् एषः मञ्चः देशस्य दूरसञ्चारक्षेत्रे अंकीय संपर्क संवर्धने च अत्यन्तं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्व्यूढवान्। श्रीमोदी सप्रश्रयं प्रावोचत् यत् 5G सेवा अधुना देशस्य सर्वेषु जनपदेषु प्रसारिता अस्ति। तेन सविशेषं संसूचितं यत् प्रशासनं सम्प्रति 25 कोटि छात्रान् विभिन्नाङ्कीय शिक्षा मञ्चैः सह संयोजयितुं द्रुतगत्या कार्यं विदधाति।
1: 2022 में इसी मंच से हमने देश में 5G की शुरुआत की थी। फिर 2023 में मैंने बताया था कि भारत कैसे 5G रोल आउट से 5G रीच आउट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आज हम सभी देख रहे हैं देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन भारत में हैं, जहां से 5G नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है और मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2022 की तुलना में 10 गुना बड़ी है।
0: सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् देशे कृत्रिम बुद्धेः AI इत्यस्य नियन्त्रणाय आगामी मासे एकं परामर्श पत्रं प्रस्तुतं करिष्यति।

0: भारतेन प्रतिपादितं यत् जैश ए मोहम्मद इत्यादंकी संघटनस्य प्रमुखस्य मसूद अजहरस्य विषये सूचनायै पुरस्कार घोषणां कृत्वा इस्लामाबाद प्रशासनं स्वस्य आतंकवाद समर्थनं आच्छादयितुं प्रयतते। भारतेन स्पष्टीकृतं यत् विश्व समुदायेन 9/11, 26/11 अथ च पहलगाम आक्रमणानां संहारः नैव विस्मृतः। संयुक्तराष्ट्रमहासभायां स्वस्य प्रत्युत्तराधिकारस्य प्रयोगं कुर्वन् भारतस्य प्रथमसचिवः रघुपुरी अवोचत् यत् केवलं घोषणाभिः आतंकवादः पराजेतुं नैव शक्यः। सः आतंकवादस्य दुष्कर्मकारिणां वित्तपोषकाणां अथ आश्रयदातॄणां विरुद्धं कठोरकार्याचरणाय आह्वानं विहितवान् इति वार्ताः।
1: আকাশবাণী কলকাতা, সঞ্চয়িতা। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান শুনবেন গোরখ কল্যাণ রাগে খেয়াল, শিল্পী ওস্তাদ আরশাদ আলী খান। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হারমোনিয়ামে হিরণময় মিত্র।

0: গোরখ কল্যাণ রাগে শুনলেন খেয়াল, শিল্পী ওস্তাদ আরশাদ আলী খান। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হারমোনিয়ামে হিরণময় মিত্র। শেষ হল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানটি। এখন সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মুকেশ কুমার। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
2: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड।
3: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रूपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
2: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
1: परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जुर्माने और कार्यवास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत की विवेक पर छोड़ दिया गया है। कर फाइलिंग में देरी, गलती या भुगतान करने में विलंब करने वाले करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
4: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज एक संस्थान में श्री मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष $863 अरब का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही। ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनरुद्धार के कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं की नेतृत्व वाली सामूहिक भागीदारी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का सम्मेलन आज शुरू हुआ। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. GST Council has removed power of arrest of tax officers and the Council has raised the threshold for prosecution from 1 crore rupees to 5 crore rupees. The punishment, whether fine or imprisonment or both, has been left to judicial discretion in every case. A taxpayer who files late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery, interest and proportionate penalty. Addressing media following the GST Council meeting in New Delhi this evening, Finance Minister said the Council recommended removing arrest powers under GST and raising the prosecution threshold. Finance Minister said no rate changes has been made in GST Council meeting and the rate structure is settled.
2: GST Council today has recommended common standards for notices and proceedings and no notices below the prescribed monetary threshold of 10,000 rupees, including withdrawal of pending notices below the said threshold. We will not be issuing any notices for monetary threshold of 10,000 or below.
5: Prime Minister Narendra Modi has said India's telecom sector is steadily moving towards greater self-reliance. He said the India Mobile Congress has played an important role in the country's progress in the telecom sector and digital connectivity. Mr. Modi stated this while inaugurating the 10th edition of the India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today. Emphasizing the critical importance of telecom and digital technology, Mr. Modi stressed that phone and network security must remain a priority. He also highlighted the growing challenges of deep fakes and cyber fraud and called for the development of a global framework to tackle the threat.
4: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है ये भी हम देख रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूँ, एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
5: Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav has said a consultation paper on the future regulation of artificial intelligence will be floated within the next month. Speaking to media after releasing the World Development Report 2026, the promise of artificial intelligence today, Mr. Vaishnav said that the proposed consultation paper will focus on AI safety, cybersecurity benefits and potential harms. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India recorded exports worth $863 billion last year and aims to achieve $1 trillion in exports this year. The minister said this while addressing the curtain raiser of the 31st CII Partnership Summit in New Delhi today. The summit will be held in Vishakhapatnam on the 12th and 13th of next month. Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan today called upon young Indians to harness their skills, creativity and innovative potential to contribute to the vision of Viksit Bharat by 2047. The minister was addressing students and learners at an institute in Noida today. 42 former judges have written an open letter to the people of India expressing concern over attempts to undermine the Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. They wrote that the Election Commission stands at the center of this and even the higher judiciary and statutory agencies have not been spared. The letter expressed concern that India's constitutional bodies are under sustained attack. They allege that this is a campaign driven by vested political interest with little regard for potentially devastating consequences of destabilizing the world's largest democracy. The nation is celebrating the 94th anniversary of the Indian Air Force today. Addressing the gathering at Hindon Air Base in Ghaziabad, on the occasion Air Chief Marshal A.P. Singh recalled the IAF's combat operations during Operation Sindoor. He said that the country saw firsthand the destructive power as well as the effective air defense operations of the Air Force during the operation. The 2026 Nobel Prize in Literature has been awarded to Canadian poet and essayist Anne Carson. Making the announcement, the Swedish Academy in Stockholm said the author has been honored for a bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, which created a new forms for contemporary literature. And that is the end of this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आज हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा। आज हम चर्चा कर रहे हैं हर घर बेहतर जीवन के बारे में और जिन अलग अलग पहलों की आज हम बात करेंगे उनमें एक साझा कड़ी दिखाई देती है। इनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शायद ऐसे हैं जो आंकड़ों में तुरंत दिखाई नहीं देते, चाहे वो पानी या ईंधन लाने में बचने वाला समय हो या फिर वो स्वच्छ ईंधन से होने वाले स्वास्थ्य के लाभ हो या फिर बिजली और बेहतर आवास से पैदा होने वाली आर्थिक गतिविधियां हो। आज की हमारी चर्चा इन सब विषयों पर है और आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीके पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग एंड पवन कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट। नमस्कार और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। जब भी कोई पॉलिसी अस्तित्व में आती है उसका मूल्यांकन कितने समय में किया जा सकता है? पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं पवन जी।
2: नमस्कार, अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। देखिए, कुछ पॉलिसी आप 2 महीने में नाप सकते हैं, कुछ पॉलिसी आप 1 साल में नाप सकते हैं, कुछ 5 साल में, कुछ 10 साल में, पर जो आपका रिक्वायरमेंट है, जिस पॉलिसी के बारे में आप बात करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इम्पैक्ट आपको, उसके लिए आपको लंबा वक्त देना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, इन्फ्लेशन नापने के लिए कोई पॉलिसी लेते हैं आप तो 1 महीने में नाप सकते हैं कम हुआ कि नहीं हुआ। FDI पे आपको बात करनी हो तो 1 साल का टाइम चाहिए, देखते हैं क्या हुआ, कितना आया, कहाँ से आया, कौन से सेक्टर में आया। अब जिस स्ट्रक्चरल पॉलिसीज की बात आप कर रहे हैं कि साहब जल जीवन मिशन का कितना फर्क पड़ा या जो दूसरी और गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका कितना फर्क पड़ा, उसमें आपको मिनिमम कम से कम 5 साल का, जो मेरा इकोनॉमिक्स जितनी मुझे समझ में आती है उसके हिसाब से 5 साल का आपको एक होराइजन मान के चलना पड़ेगा। कुड बी 5 साल, कुड बी 10 ईयर्स ऑल्सो, बट 5 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा। तो पॉलिसी नापने के अपने मेजरमेंट के अपने एक तरीके हैं, वो है नहीं कि साहब कोई पॉलिसी सरकार ने कल को लॉन्च किया और आज उसका मूल्यांकन करें और उसके बाद आप कहें कि साहब काम हुआ या काम नहीं हुआ, वो सही तरीका पॉलिसी का नहीं है। आपको एक सर्टेन टाइम पॉलिसी को देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट यू हैव लॉन्च्ड,
1: ताकि उसका प्रभाव नजर आए और बेहतर समझ में आए।
2: जी
1: डॉक्टर पॉल, आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आप नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं, आपका नजरिया शायद थोड़ा सा अलग होगा इस बारे में।
3: एक्चुअली अलग नहीं है पवन जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ये पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका असर कब होगा, ये बात बिल्कुल सटीक है, लेकिन ये हम रख के चल सकते हैं कि अगर एक पॉलिसी ने एक्शन अचीव करना है, मान लीजिए कि एक बात हो गई कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएंगे, तो फैसला हो गया
1: जी
3: कि हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को अगले लेवल पे लेके जाएंगे, इसको बनाने का टाइम लगेगा,
1: बिल्कुल
3: 4-5 साल 3 साल लगते हैं बनाने में, इंक्रीमेंटल रोल आउट होता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस होती है, फिर एक सैचुरेशन लेवल पे कवरेज, फिर क्वालिटी। तो कुछ चीज़ों में डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन द इनिशिएटिव, इट टेक्स डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम टू सी द इम्पैक्ट। लेकिन अ गुड बेंचमार्क इज, आई एग्री विद सर दैट 5 years इज अ गुड बेंचमार्क फॉर मैनी ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट विल एंड हैव चेंज्ड द ईज ऑफ लिविंग फॉर आवर फैमिलीज।
1: ओके,
3: तो उस बेंचमार्क से आपसे आगे बात बढ़ाते हैं।
1: जी बिल्कुल, और क्योंकि आज का जो विषय है वो हर घर बेहतर जीवन के बारे में है, तो शुरुआत घर से करते हैं।

0: अब जब हम घर को परिभाषित करते हैं या हम आवास की बात करते हैं, तो क्या आवास को केवल एक छत के रूप में देखना चाहिए या फिर परिवार की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के आधार के रूप में भी उसे देखना चाहिए?
1: घर की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपको घर में पहुंच के अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप 5 दिन कहीं बाहर रहे, आप घर में जाए, घर से ज्यादा कहीं खुशी नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम जब घर बोलते हैं तो उसमें सब कुछ होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, उसमें बिजली होनी चाहिए, उसमें रहने की जगह होनी चाहिए, इसमें इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसमें घर में रहकर आप, आपके बच्चे हैं, आपके जो परिवार है उसकी देखभाल करिए आप। तो आप मेरे लिए घर जो है, इवन सरकार की स्कीमों के हिसाब से घर जो है केवल छत दे दिया तो वो घर नहीं है, पूरा एक होलिस्टिक आकार प्रकार है उसका। वो जब आपके पास है तो आप उसको घर बोल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: मेरे ख्याल से शायद यही पूछना चाह रही थी आप।
0: जी बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी और ये मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को मद्देनजर रखते हुए पूछना चाह रही थी। डॉक्टर पॉल, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप पवन जी की बात से सहमत हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि भारत में कई दशकों से गरीबों के लिए, गरीब परिवारों के लिए सरकारी आवास योजनाएं चलती आ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने किन चुनौतियों को भापा या किन कमियों को भापा जो वो पूरा करने की कोशिश कर रही है, या कौन से ऐसे गैप्स थे जिस इस पॉलिसी ने आइडेंटिफाई किया?
1: पहले भी सरकार जो है वो आवास योजनाओं पे काम करती थी। इस सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, साथ ही साथ जो सरकार एक ओवर और होलिस्टिक एटीट्यूड जो पहले था उसमें पूरा एक कल्चरल इमोशनल चेंज लाया, उसमें चेंज लाया जिसमें बोला कि साहब ये आवास जो है, ये हमने कहा कि ये केवल एक स्केलेटन नहीं है, ये केवल स्ट्रक्चर नहीं है, ये उससे बढ़ के कुछ है। तो पहले भी हम लोग गांव में जाते थे, जैसे पत्रकार के तौर पे कहीं गए तो आपने कहा कि साहब घर बनाया क्या आपने, तो पता चला कि साहब उसका घर बना हुआ है और आधा बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ है। आधा घर बना मतलब आप समझिए कि सीने तक की दीवार आई, उसके बाद दीवार नहीं है, पैसा खत्म हो गया था। इस सरकार ने आके थोड़ा सा उसमें बात को आगे बढ़ाया, उसको ज्यादा चेंज किया और अक्रॉस दी स्टेट्स, आप मध्य प्रदेश जाए, बिहार जाए, आप यूपी जाए, किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक रूपता मिलेगी आपको प्रोग्राम में। अब वो जो आवास योजना है वो उनके लिए केवल छत नहीं है, आवास योजना उनके लिए सुरक्षा है, उनके लिए डिग्निटी है, उनके लिए उनका रिकॉग्निशन है। अब सोचिए कि एक फैमिली के लिए ये सब कितना जरूरी होता है, क्योंकि पहले हम इसलिए निहारिका इस पे बात नहीं करते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था। अब हमें पता चला कि अच्छा सरकार ने रिकॉग्नाइज किया कि हम एग्जिस्ट करते हैं, कोई एक ऐसी सरकारी बॉडी है जो इस बात की चिंता कर रही है कि साहब हमारे बारिश हो रही है तो बारिश में हम केवल भीग नहीं रहे हैं, हमें रहने की जगह नहीं है। उसमें डॉक्टर साहब से आप मेडिकल पे ज्यादा बात करेंगे, जैसे फर्ज करिए कि हमारे पास घर नहीं है, घर नहीं होने से उसके हेल्थ कितना इम्पेक्ट होता था, ये लोग उसके विद्वान है उस पर ज्यादा बात करेंगे। अब फर्ज करिए किसी का घर है, सांप काट लिया, आप कल्पना करते हैं कभी गांव में जिनके घर में मिट्टी के हैं, छप्पर हैं, घास फूस के हैं, डॉक्टर साहब वहां सांप बैठा हुआ है, दूसरे जानवर बैठे हुए हैं, बिच्छू है, जगह नहीं है, दो ईंटों के बीच में या दो मिट्टी के नली के बीच में
0: जी।
1: तो ऐसा नहीं, घर केवल उनके लिए अभी आज की तारीख में रिकॉग्निशन है, प्राइड है, गौरव का भाव है, उसके अलावा एक ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, वो सब पूरा एक पूरा आस्पेक्ट है, वो पूरी चेन है, वो घर है, इसलिए वो सबसे पहला तो उनको कि साहब अच्छा हमें घर मिला। अब जब घर देंगे, अभी क्योंकि आगे जब आप बात करेंगे, आगे बिजली की बात करिएगा, ये सब सरकार के अलग अलग मंत्रालय निहारिका हो सकते हैं, वो सरकार के लिए मंत्रालय अलग हो सकते हैं, वो सारी मंत्रालय के जो चेन्स हैं वो जाके सिंपल एक फैमिली और एक व्यक्ति उसके अपलिफ्टमेंट कैसे कर रहा है वो अब से जो पहले होता था उसमें एक सी चेंज है। हम देखिए कोई सरकार कितना काम कर रही है इसका मूल्यांकन आपको एक समय के बाद करना पड़ेगा। और किसी पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं कि साहब अच्छा है बुरा है जो भी है, तो आपको एक वक्त उसको देना पड़ेगा, उसके बाद उसका असेसमेंट करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि साहब कितना फर्क पड़ा है। एक फर्क ये पड़ गया कि लोग कहते थे कि अच्छा घर हमें क्यों नहीं मिला, जिनको नहीं मिला उनको इस बात की दिक्कत नहीं कि हम कैसे रह रहे हैं, उनको इस भरोसा है कि साहब ऐसा है कि देयर इज अ स्कीम अवेलेबल जिसमें हमारे बराबर के आर्थिक समानता वाले लोगों को मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये अवेयरनेस अपने आप में बताता है कि साहब इसका मतलब है कि थोड़ा सा सोच में एक बेहतरी आई है, ये एक अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था आवास योजना उनके लिए केवल वो नहीं है, वो मेंटल एंड फिजिकल बोथ, वो उनके लिए अपलिफ्टमेंट का एक,
0: यानी काफी लेयर्ड टर्म है जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, और जब हम आवास की बात करते हैं तो वो केवल दीवारें नहीं है, उसकी काफी सारी लेयर्स हैं। आपके विचार क्या है सर इस पे?
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि हर आवास में दो जरूरतें पूरी हों तो वो आवास पूरा है। एक है कि उसमें पानी की सप्लाई होनी चाहिए, पीने लायक पानी टैप से।

0: घर में आए, तो प्रधानमंत्री जी ने उसका कार्यक्रम बनाया, जल जीवन मिशन बनाया, हर घर नल जल की उन्होंने परिकल्पना करी। दूसरा है, और शायद उससे पहले आता है, कि टॉयलेट हो
1: जी,
0: घर में एक टॉयलेट हो, ये फंडामेंटल नीड है, एक ह्यूमन राइट वाली बात है ये। और हम इतना बड़ा काम हुआ है, सिर्फ दीवार बनाने और टॉयलेट ही भूल जाना, या फंक्शनल टॉयलेट ही भूल जाना, या उस तक का इस्तेमाल ना बता पाना उस हाउस होल्ड को, तो अधूरी बात है। तो अगर हम ये दो चीजें देखें, तो प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में स्वच्छ भारत का अभियान के अंतर्गत गाँव में 12 करोड़ टॉयलेट बनाने का संकल्प लिया और उसको सिद्ध करके दिखाया। उसके कितनी डायमेंशंस है, ईज ऑफ लिविंग है पहले, एक सिक्योरिटी है, और हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, खासकर जो उनकी लाइफ इम्प्रूव होती है, आप उसके बारे में सोचिए। तो जो घर में जो बदलाव आया है, ये एक मुद्दे को अगर देखें, तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है, जो काम पूरा नहीं हुआ था
1: जी।
0: और अगर मैं इसको स्वास्थ्य से जोड़ूं, तो पब्लिक हेल्थ का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल है वो अच्छा पानी है, और एक एनवायरनमेंट है जो कि सफाई वाला हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, और टॉयलेट आती है आसपास गांव में, सारा ओपन डिफिकेशन फ्री होता है कि बाहर शौच कोई नहीं जा रहा है, तो जो जीवाणु है वो मुंह के रास्ते से, गंदगी से, मुंह के रास्ते से आके बीमारी नहीं पैदा करते। दस्त नहीं की बीमारी होगी, हेपेटाइटिस नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको स्वास्थ्य से जोड़िए। यहाँ की हम पढ़ते थे बहुत जमाने पहले कि हर बच्चे को 3 एपिसोड जो है वो डायरिया के होते हैं बचपन में, अब सब बदल गया है, नेग्लिजिबल हो गया है। और इसके फॉर्मल एस्टिमेट हमारे पास है कि जब ये सैचुरेट हुआ काम रूरल इंडिया में, तो 70,000 बच्चों की डेथ हर साल कम हुई है, क्योंकि डायरिया कम हुआ, इन्फेक्शन डिजीज कम हुई, ओरोफिकल रूट टूटा, और इसके अलावा न्यूट्रिशन बढ़ी, और ये सब होने के साथ साथ खाफ एनवायरनमेंट से, सिर्फ ये एक सेंटिमेंट की बात नहीं है, एक नपीतुली बात है कि लाइव्स बच रही हैं, और उनको नहीं दौड़ना पड़ रहा है, अपना पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा है कि डायरिया के लिए और दस्तों के लिए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बढ़ते हुए हम इसको जोड़ेंगे कि हर घर नल जल से कितना ईज ऑफ लिविंग हुई है, वो भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा।
2: मेरा अगला सवाल इसी पर होने वाला था, जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान पे, दोनों की मेरा ख्याल से एक साथ बात हम कर सकते हैं, और वो इसलिए कि इसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य पे पड़ता है, और दूसरा असर वुमेन एम्पावरमेंट पे पड़ता है। तो अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, हमारे देश का एक चित्र रहा है जहां हम एक महिला को दूर जाते हुए देखते हैं मटका लेके पानी लेकर आने के लिए, और शायद ये जो काम था, ये जो कार्य था, वो पढ़ाई से, रोजगार से दूर रखता था, और दूसरा इसका असर जो पड़ता था वो महिलाओं के स्वास्थ्य पे पड़ता था। तो जल जीवन मिशन आने से क्या ये चित्र बदलने लगा है थोड़ा सा?
3: कल्पना कीजिए, सुबह सुबह के 6 बजे हैं, और गांव की महिलाएं 2 बाल्टी हाथ में लिए हुए, या पानी का कोई बर्तन जो जिसके बगल के जलाशय में गए, कुएं पे गए, या कोई और पानी का जो दूसरा स्रोत है उसके पास गए और लेके आए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर वहां से लौट के आना। ऐसा नहीं है कि कोई ये चीज हमने किताबें पढ़ी, बाद में हमने पत्रकारिता की तो हमने देश के अलग अलग इलाकों में देखा, राज्य का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सीन बहुत सारे इलाकों में थे। वो जाती थी तो क्या करती थी, वो जाती थी तो बेटी उसके साथ जाती थी, पति नहीं जाता था। पानी लाने में पुरुष का रोल नहीं होता था, पानी लाने में महिला का ही रोल होता था, वो लेके जाती थी, बेटी जाती थी उसके साथ, और वो पूरे 3 घंटे की यात्रा होती थी नियार का, जाना आना और तैयारी। ये वक्त ज्यादा लगता था, एनर्जी जाता था, इकोनॉमिक्स में बोलते ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
2: बिल्कुल।
3: तो आप देखिए कि क्या हालत क्या थी, वो सीन नहीं है जैसे बुंदेलखंड के इलाके में, मध्य प्रदेश के बाकी और इलाके में। यूपी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया जल जीवन मिशन पे। ये जल जीवन मिशन, इसमें जो सफरिंग कम्युनिटी थी वो महिलाएं थी, पुरुष नहीं था,
2: बिल्कुल।
3: टू अ ग्रेट एक्सटेंट मैं ये कहूंगा, टू अ ग्रेट एक्सटेंट महिलाओं के लिए टाइम खराब होता था, एनर्जी जाती थी, घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था, ये सब समय की बचत हुई। तो आप देखेंगे जल जीवन मिशन से न केवल क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज बिकम मच बेटर,
2: और शायद इसका जो प्रभाव है आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक नजर आएगा, इसका पीढ़ीगत प्रभाव शायद ज्यादा होगा, शायद हमें इमीडिएट इफेक्ट देखने को इतना ना मिले, लेकिन आगे जाकर जैसे आपने शुरू में कहा था कि हर पॉलिसी का मूल्यांकन करने के लिए कुछ वक्त हमें देना पड़ता है,
0: इतना प्रभाव तो जिस दिन पानी आ गया उस घर की तो दशा उसी दिन बदल गई,
2: उसी दिन बदल गई।
0: अब देखिए मैं इसके एक आंकड़े से जोड़ता हूँ, पवन जी आपने जो बातें कही है, एक स्टेज पे इसका जो स्पीड एंड स्केल है ना इसका अंका, मैं थोड़ा सा उभारना चाहूंगा, उसका मतलब कि स्पीड एंड स्केल सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं है, काम का नहीं है, जो चेंज हो रहा है। अब स्पीड की बात करो, एक स्टेज पे पवन जी जब पीक पे चल रहा था, उस टाइम पे एवरी सेकेंड

0: पानी ला रहे हैं
1: जी,
0: जिंदगी और है, कल बदल गया, ये स्पीड है। तो इसके लिए वेट करने की और जरूरत नहीं है,
2: नहीं है।
0: ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका स्केल देखिए, स्केल ये है कि जब शुरुआत हुई थी तो 19 करोड़ या 19.4 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड में से सिर्फ 3.23 करोड़ 17% घरों में टैप का पानी आ रहा था। आज हम ये बात ऑलमोस्ट 13 करोड़ तक पहुंच गए हैं, और वो 17% था, और आज हमें 79% 80%। 17 से 80 की जर्नी, और रोज बदलाव हुआ होगा उस घर में एक दिन के अंदर छोटे ड्यूरेशन में, ये सोचने वाली बात। जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो हमने लगभग 16 करोड़ घरों में पानी की सुविधा कर दी होगी। इसको अगर मैं देखूं कि इसका मतलब क्या है, 70 करोड़ लोगों की जिंदगी बदली, मल्टीप्लाई करिए आप। और वो पता कितनी पॉपुलेशन है, आप अमेरिका की पॉपुलेशन लो, उसके साथ में जोड़ो आप ब्राजील की 21 करोड़, अमेरिका 33, ब्राजील 21, और फिर जोड़ो इंग्लैंड की पॉपुलेशन 6 करोड़। आप ये सोचिए कि 5-6-7 साल के अंतर अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील, उतने बड़े हाउसहोल्ड्स में उतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपने पानी की, ये सर खास बात है जिस सरकार में, जो आप शुरू में बात करी ना कि अधूरे छूट जाते थे वो, तो इस स्केल पे ये काम हुआ है। और हेल्थ से जोड़ूं अगर तो बिल्कुल क्लियर है कि साफ पानी आएगा, वाटर, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फंडामेंटल एसेट्स है पब्लिक हेल्थ के। पब्लिक हेल्थ शुरू ही वहां से होता है
2: जी,
0: सफाई हाइजीन पानी से ही शुरू होता है, पर्सनल हाइजीन से, इसी से शुरू होता है। तो उसमें 4 लाख बच्चों की डेथ, अगेन बच्चों पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, 4 लाख डेथ जो है वो 5 साल के दायरे में कम होंगी और हुई है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये जो बुनियादी बदलाव है, उस घर की दशा बदल गई, और उस घर के बच्चों की दिशा बदल गई
2: जी,
0: और उस घर के में एक माहौल की दिशा बदल गई। ये दो मिशन को हम इस स्वरूप में भी सर देख सकते हैं।
2: मेरा ख्याल है हमारी परिचर्चा में अब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था, इसको शुरू करने के पीछे का कारण और उससे आने वाले बदलावों के बारे में अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी।
0: स्वच्छ हो भारत, गाँव स्वच्छ हो, हमारा आसपास स्वच्छ हो, तो ये तो हमारे पूज्य गांधी जी का एक सपना रहा है, और उन्होंने देश को दशकों तक उस तरफ ले जाने का एक एग्जांपल पैदा किया। जैसे सर ने फिर कहा, सबने कोशिशें करी, कुछ कुछ कर पाए, कुछ कुछ अच्छा किया, कुछ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इसमें एक टारगेट बांधा गया, टारगेट के साथ साथ एक स्ट्रेटजी बनाई गई, फंड्स उपलब्ध किए गए, पॉलिटिकल कमिटमेंट जोड़ी गई, एक कंसेंसस बनाई गई, और सबसे बड़ी बात, इसको एक जन आंदोलन बनाया गया। तो जन आंदोलन जब बना तो असली चेंज जो है तभी होती है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जबकि जन आंदोलन होता है
2: जी।
0: ठीक है, आइडिया बन जाता है, वो रिफॉर्म हो गया, फिर परफॉर्म करना शुरू किया कि चलो पाइपें बिछाओ, चलो ये टॉयलेट बनाओ, पानी लाइए, लेकिन जब जनता जुड़ती है उस, तो वो हर घर नल जल में भी जरूरी है, पानी की समितियां हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस देखती हैं, उन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो इतने स्केल पे इस तरह से जो काम हुआ है तो वो काम अकम्प्लिश हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बजट दिया गया, पॉलिटिकल कमिटमेंट स्टेट ने भी दिखाई, राज्यों ने भी दिखाई, और उसको करने के लिए जो शैली बनी उसको एक हम बिल्कुल वो एक सिग्नेचर शैली की तरह मैं तो कहूंगा फॉर सोशली रेलेवेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैव हैपेंड इन आवर कंट्री रिसेंटली।
2: और यदि मैं आपसे अगर पीएम उज्ज्वला योजना का जिक्र करूं तो इस योजना की ग्रास रूट लेवल पर बदलाव लाने में क्या भूमिका रही है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक स्कीम रही है भारत सरकार की सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना की क्या भूमिका रही है ग्रास रूट लेवल के जो घर हैं उन तक बिजली पहुंचाने में।
3: जैसे डॉक्टर साहब ने स्वच्छता पे बात की, अभी आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए ऑल इंडिया रेडियो में राइट
2: जी,
3: पर आरबीआई सामने बिल्डिंग है रिजर्व बैंक की, इस पूरे इलाके में अभी से 7-8 साल पहले, हो सकता है कि थोड़ा और पहले, लेकिन रफली 7 साल पहले आप एक भी टॉयलेट इस आसपास में नहीं था, एक भी नहीं था। जब मैं कह रहा हूं, अगर कहीं मेरी याददाश्त धोखा दे रही हूं तो अलग बात है, पर कहीं एक भी टॉयलेट नहीं था। अभी इस विसिनिटी में आपको ढेर सारे टॉयलेट अप एंड रनिंग, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के, अच्छे स्टेटस में वो मिल जाएगा आपको, कोने पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सामने, आरबीआई के कोने पे, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको उद्योग भवन के कोने पे, फिर आगे जाएंगे तो आपको नेशनल मीडिया सेंटर के कोने पे, वगैरह वगैरह। ये अपने आप नहीं आया है, सरकार आपको टॉयलेट बना के दे सकती है, सरकार आपको घर से उठा के टॉयलेट तक नहीं ले जा सकती। देखिए कुछ चीजें समझने की, हर बात के लिए हम सरकार को बोले कि साहब आप ही जिम्मेदार हैं, ये सही तरीका नहीं है, ये रिजल्ट अच्छे आउटकम पे नहीं ले जाएगा। सरकार टॉयलेट बना के हमको दे सकती है, सरकार टॉयलेट में जबरदस्ती पकड़ के हमको नहीं ले जा सकती।
2: बिल्कुल
3: राइट, मेरा ही मानना है।

0: कि स्वच्छता में कम से कम आधा हिस्सा हमारा होगा। सरकार के पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हमारा हैबिट्स नहीं चेंज कर सकती, सरकार हमारा बिहेवियर नहीं चेंज कर सकती। सरकार को हमारे लिए एक टॉयलेट का प्रमोशन या जो भी स्वच्छता अभियान उसका प्रमोशन कर सकती है, लेकिन हमें उसमें शरीक नहीं करा सकती।
1: बिल्कुल,
0: वो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, जो आप पॉलिसी जिसकी बात आप कर रहे हैं, जैसे फर्ज करिए कि आपने शुरुआत की घर से, घर में स्केलेटन नहीं है, घर बनाया आपने, उसके बाद उसमें इंसान रह रहा है, उसमें घर में 24 घंटे में ज्यादातर टाइम जो है वहां पे महिलाएं देती हैं। इस बात को हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं जब घर की बात कर रहे होते हैं, तो कि उसमें पुरुष नहीं है, उसमें महिलाएं दिन भर काम कर रही हैं। उसके लिए सबसे पहले तो उसके लिए इतना बड़ा वो इंश्योरेंस है। आप किसी पुरुष से पूछिए कि घर पे कितनी खुशी है आपको, और महिला से पूछिए घर की कितनी खुशी है, आप बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क पाएंगे दोनों
1: अलग-अलग नजरियों
0: दोनों के रिस्पांस में, क्योंकि घर में दिन भर वो रहती है। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए दिल की बात है, इज्जत की बात है, गरिमा की बात है, डिग्निटी की बात है, रिकॉग्निशन की बात है। अब घर है तो घर में साहब बिजली है, आधा काम आपका खत्म। घर पे बिजली है, दूसरे और काम कर सकते हैं आप, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बिजली के और भी 10 उपयोग है। मिक्सी कैसे चलाएगा, मिक्सी से चलाएगा, पहले आप लगे रहते थे सिलबट्टे पे
1: जी।
0: आधा घंटा आपका हेल्थ खराब भी हो तो भी आप मसाला भी पीस सकते हैं, पहले वो काम नहीं कर सकते थे सिलबट्टा उठाने में ही बहुत मेहनत लगती थी। तो बिजली आ गई, पानी आ गया आपके पास। अब जिस स्कीम की बात आपने की है, जैसे बिजली की बात हम लोगों ने की, आपके पास पूरा रसोई का जो पूरा नक्शा है, पूरा मैप है, पूरा रसोई का जो लैंडस्केप है वो पूरा बदला हुआ है अब। और जब पूरा रसोई का लैंडस्केप बदला हुआ है तो ये पूरी, आपको अगर इकोनॉमिक समझना हो तो किसी के रसोई में घुस जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, और कोई तरीका दूसरा नहीं हो सकता। रसोई में घुस जाइए और इन सब पे प्रकाश डालिए, पानी है, रसोई है, बिजली है, घर में बिजली है, तो आखिर में जो सबसे बात, वो डॉक्टर साहब इस पे प्रकाश डालेंगे, इनसे सवाल पूछिएगा जरूर तैयारी करके, कि बीमारी से सुरक्षा। महिलाएं जलावन लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी, जलावन अगर मान लीजिए सिला हुआ है, धुआं निकलेगा अभी आधा घंटा, तब जाके जलावन थोड़ा कड़क होगा, तब जाके वो जलेगा, तब तक वो स्ट्रगल कर रही होगी, बेटी को पीट रही होगी, बेटी पे चिल्ला रही होगी, झुंझला रही होगी, उसके बाद उसकी आंखें खराब होगी। अगर उसका लंग खराब है, मैं तो उसका विशेषज्ञ हूं, मैं केवल आपको इंडिकेटिव बता सकता हूं। फिर वो खांसते खांसते तैयार करेगी खाना, टाइम उसका जाएगा, उसका मेंटल पीस लूज होगा, वगैरह वगैरह। उस सूरत में रसोई में अब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बची है। तो ये सामाजिक सुरक्षा से बढ़ के अब उसके देखियो बीमारी से उसकी सुरक्षा है। स्वच्छता अभियान में थोड़ी और सख्ती की जरूरत है, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हम जैसे लोगों को करने की जरूरत है, जो
1: जन जनता की कैटेगरी में जरूरत है।
0: तो ये फर्क दिख रहा है साथ में जमीन पे मेरे ख्याल से।
1: डॉक्टर पॉल, हमारी इस परिचर्चा में स्वास्थ्य का बार बार जिक्र होता है, स्वास्थ्य का बार बार मेंशन होता है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम ने ग्रास रूट लेवल पर क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया है, और आरोग्य मंदिर का इसमें क्या रोल रहा है?
2: आयुष्मान भारत में दो मेजर प्रोग्राम लॉन्च हुए थे 2018 में, और फिर दो उसके बाद आए। पहली जो आपने बात कही वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा आपने मेंशन फिर किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसको थोड़ा बाद मिलाते हैं। हम पीएमजे की बात, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जब अस्पताल में जाने की जरूरत पड़े, अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत पड़े, या सेकेंड उसको हम कहें और तरह से तो सेकेंडरी टर्शरी केयर में हमें एक्सेस करनी है केयर, दाखिल होकर इलाज होना है, इन पेशेंट इलाज होना है, और पेशेंट वाला प्राइमरी केयर में जाता है, तो वहाँ जो सुविधाएं हेल्थ केयर की मिले, पहली बात एक्सेस हो, दूसरा है कि एक्सेस के साथ साथ मेरी जेब पे, मेरे अपने रिसोर्स पे, मेरी बचत पे बोझ ना पड़े
1: जी,
2: ये उसका मेन पर्पस है। अब सोचिए कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2004 के एस्टिमेट या 2014 के एस्टिमेट हम लेते हैं, आपको हैरानी होगी कि तरह तरह के एस्टिमेट कहते थे कि हमारे देश में 4 करोड़ से 7 करोड़ लोग 9 करोड़ लोग, डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, बीमारी की वजह से जो गरीबी की रेखा उसके नीचे गिरते थे
1: जी,
2: इतने लोग, और वो किस तरह से, और इंडिविजुअल पे जाइए कि वो वुमन अकेली है, उसके बच्चा बीमार है, राइट, कैंसर हो गया मान लीजिए, भयानक बीमारी, घर में कोई नहीं है तो क्या होगा, या तो हम जाएंगे ही नहीं, बताइए कितनी दर्दनाक बात है वो
1: जी।
2: और गए तो घर बेच के जाएंगे, जमीन बेच के जाएंगे, गहना

0: ये सच्चाई है, सच्चाई रही है ये, कि हमें हेल्थ केयर का खर्चा इतना बोझ पड़ता रहा है, जितनी भी कोशिशें हुई उसके बावजूद भी इतना बोझ पड़ता था कि हमारे जेब से खर्च करके हम बर्बाद होके इन पेशेंट केयर हम लेते थे। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने क्या किया कि 60 करोड़ लोगों के लिए, 15 करोड़ के ऊपर हाउस होल्ड्स को लेके ये सुनिश्चित कर दिया गया कि उनके लिए हर परिवार को हर साल 5 लाख का जो खर्चा है उसके बराबर जो हेल्थ केयर मिलनी है, उसके एवज में जो मिलनी है वो 5 लाख का कवरेज हर फैमिली को, उन फैमिलीज को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो एक परिवार को स्वास्थ्य के लिए, इन पेशेंट केयर के लिए 5 लाख का जो खर्चा है वो एंटाइटलमेंट की तरह उन बेनिफिशरीज को मिलेगा। अब ये बदलाव है और बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें मैं सिक्योर होता हूँ, और ये जब बीमारियाँ कवर हो रही हैं ना उसमें कोई भी छूटी नहीं है। 1900 से ज़्यादा प्रोसीजर्स, चाहे वो इंटेंसिव केयर है, चाहे क्रिटिकल केयर है, चाहे कैंसर केयर है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट है, या चोट लग गई है उसका इलाज है, या नी रिप्लेसमेंट होना है वो है, या स्टेंट डलनी, ये सारे उसमें शामिल है। और किस व्यक्तियों के लिए, जो हमारे बॉटम के 40% लोग हैं, ये वो 15, इनको हम उस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं इन परिवारों को। तो इतना ये बदलाव है, उसकी वजह से लोगों की, एक तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया, और अभी जो NSSO का साइकिल आया उसमें दिखाया गया है कि अब लोग छुपाते नहीं हैं, वो जाने शुरू हो गए। ये बिल्कुल कैशलेस है, आपको वहाँ पे एक पैसा ही नहीं देना है। और आप अगर इसको आंकड़ों में फिर एक बार कोशिश करो डालने की, तो हर रोज़ लगभग 90,000 से 1 लाख लोग, व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है इस कार्यक्रम के अंदर। आजकल अभी तक 12 करोड़ व्यक्तियों को इसका फायदा हुआ है। और उसमें मैं कहना चाहूँगा मेल फीमेल का प्रपोर्शन पवन जी एग्जैक्ट
1: जी,
0: जितने व्यक्ति मेल गए दाखिल हुए या जितने कार्ड मेल्स के बने उतने ही फीमेल्स के बने हैं, उनकी एक्सेस बढ़ी है। और अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो लगभग 2 लाख करोड़ का जो खर्चा इस स्कीम ने उठाया, वो बोझ अदरवाइज जनता के ऊपर था, इन 40% लोगों पे था, और अब जो है 70 और 70 से ऊपर के लिए एडिशनल, आप किसी भी तबके से हो उनके लिए भी 5 लाख का कवरेज उपलब्ध कर दिया गया है, चाहे अमीर गरीब कोई भी है, और उसके बियॉन्ड है ये, मतलब जो शुरुआत हुई थी उसके बियॉन्ड है, और उस 60 करोड़ नंबर के अंतर्गत है। लेकिन ये वो जो लोअर सोशो इकोनॉमिक वाले हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए नहीं है, ये सब के लिए है। तो एक ये ऐसा कार्यक्रम है, और ऐसी ये एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है, जो कि आम जिंदगी को बहुत बेहतर करता है, और लाइफ बचती है और खर्चा बचता है।
2: और शायद पब्लिक हेल्थ पर जो तनाव रहा है इतने सालों से, शायद वो भी काफ़ी कम हो जाएगा इन कदमों की वजह से, इन स्कीम्स की वजह से।
0: इन स्कीमों से, ये दोनों स्कीम अगर हम जोड़ें
2: जी,
0: कि यहाँ तो सेकेंडरी टर्शरी अंदर, फिर प्राइमरी केयर वाली आयुष्मान आरोग्य मंदिर की हम स्कीम को जोड़ें, जिसमें कि एक नया, एक जो हमारा सब सेंटर लेवल है, 6,000 की पॉपुलेशन के लिए उनकी जो दवाइयाँ जो बढ़ गई हैं वहाँ पे, डायग्नोस्टिक टेस्ट बढ़ गए हैं, और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा वहाँ पे व्यक्ति हमारे लिए उपलब्ध हो गया है, उन सब के वजह से हेल्थ केयर जो है वो लोगों के पास, क्या ये काम पूरा हो गया है? नहीं। क्या ये काम पूरा परफेक्ट करना है? हाँ। लेकिन इन सालों में व्यवस्था बन गई है, और इसको सक्सेस करना, जैसे पवन जी ने कहा, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, जनता को भी जुड़ना है। वो इन सुविधाओं का फैसला लें, वहाँ जाके बोलें कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करिए, मेरा ब्रेस्ट कैंसर चेक करिए, मेरे 3 साल हो गए हैं या पिछली बार आपने देखा, मेरा डायबिटीज़ मैंडेटेड है हर साल चेक होना, जाइए वहाँ पे, जाके लाइन में लगिए, आप भीड़ करो, उसका इस्तेमाल करिए, वहाँ टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दृष्टि से अगर हम देखें, तो एक्सेस बढ़ना एक फर्ज है उसमें, और एक्सेस हेल्थ का बढ़ने के साथ साथ जेब के ऊपर, मेरे पर्सनल खर्चे के ऊपर, मेरा फाइनेंशियली मुझे सिक्योर रहना है, ये दोनों को जोड़ते हुए एक बड़ा ही नोबल मिशन हुआ है, बहुत हद तक सक्सेसफुल है, बहुत हद तक आप भी आगे जाना है।
2: बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा

0: अभियान। पवन जी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये नवंबर 2023 में स्कीम आई थी, जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं या जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इस स्कीम की, इस कदम की, इस योजना की क्या भूमिका है?
1: देखिए, फिर इसमें केवल ग्रुप बदला है निहारिका, आप मतलब बाकी चीज़ें तो सबके लिए है, ये केवल आदिवासी इलाकों में है जिसमें सरकार ने आइडेंटिफाई किया था, मेरे ख्याल से 72 या 75 कुछ जनजातीय ग्रुप थे जिनके लिए लॉन्च किया था वो, इसलिए क्योंकि वो और उनकी स्थिति और थोड़ी ज़्यादा विकट है, तो ये बहुत नया इस्टेब्लिश किया है, इस पॉलिसी को थोड़ा सा और आपको टाइम देना पड़ेगा असेस करने के लिए, लेकिन सरकार का इंटेंशन वही है, सरकार की ऑनेस्टी वही है, सरकार का ऑब्जेक्टिव वही है, केवल ग्रुप लोगों का डिफरेंट है। कुल मिला के इस पे बात करिए कि देखिए, जन सेवा की कसौटी जो सरकार काम कर रही है, जो पब्लिक सर्विस सरकार कर रही है, उसका क्या पैमाना है? उसका पैमाना है कि आम आदमी की जिंदगी में ये कितना बदलाव आया। इसमें ये भी आम आदमी है
0: जी।
1: जो अभी तक जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो बात हम कहते, वो सब आम ही आदमी के लिए है, राइट। इसमें ग्रुप केवल चेंज हुआ पड़ा है, पर ये सब आम आदमी, वो पूरा भीड़ जो है वो आम आदमी का है। तो आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है, आपकी बातचीत का आज का जो है केंद्रीय तत्व ये है, और आम आदमी कि जिंदगी में कितना बदलाव आया है और महिलाओं की जिंदगी में कितना बदलाव आया है। मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही बात कह रहा था कि जो सोसाइटी अपने 50% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दे, उसकी चिंता नहीं करे, उसको छोड़ दे अपने हाल पे, वो सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस सरकार ने आके वापस ये केंद्र में इस डिमांड को, इस अटेंशन को वापस लाया है कि इस देश में महिलाओं की स्थिति जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, तब तक आप किसी अच्छे सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल।
1: कवरेज क्या है? नंबर एक, देखिए आपको पता चलेगा उसका कवरेज, उसका यूसेज क्या है, कितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं मेजरमेंट और अल्टीमेटली टेस्ट करने की बात कर रहा हूँ कि सरकार जब टेस्ट करेगी अब से 5 साल बाद तो क्या होगा, कवरेज कितना है, यूसेज कितना है, इसका आउटकम क्या रहा है, और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कल को जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कल को ये नहीं कहेंगे साहब कि मैं ओपन डिफेकेशन में जाऊँगा, वो पूछेंगे कि हमारे घर में टॉयलेट क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। उसको पता है कि साहब ये दिस इज द न्यू नॉर्मल, घर में टॉयलेट चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं इसको नापने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा
0: जी।
1: इसीलिए बदलाव है, सरकार की सीरियस एफर्ट्स हैं, अलग अलग राज्य में उसके अलग अलग इंपैक्ट हो सकता है। मेरे ख्याल से आम आदमी की जिंदगी में ढेर सारे बदलाव हैं, पॉजिटिव हैं, मेरे ख्याल से इसमें और बेहतर हो सकता है, इससे कोई इनकार करेगा क्या? कोई नहीं,
0: कोई नहीं। बहुत खूब, मेरा ख्याल है इसी विचार के साथ हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा, और धन्यवाद आपका, आप दोनों हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े और हमारे स्टूडियो आए, थैंक यू सो मच।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

आकाशवाणी कोलकाता का यह संचयिता चैनल है जिसे आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर। इसे आप डिजिटल मोड के साथ साथ न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त हो चला है 7:43:31। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दर्पण अपनी दोस्त प्रीति के साथ। दर्पण कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं एक नज़र। एक नज़र में सबसे पहले हम बात करते हैं वायुसेना दिवस के पर। आज 8 अक्टूबर है भारतीय वायुसेना दिवस। यह दिन उस शक्ति साहस और समर्पण को नमन करने का दिन है जो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए आसमान में हर पल तत्पर रहती है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। तब से लेकर आज तक इसने एक लंबा और गौरवशाली सफर तय किया है। आधुनिक लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों, हेलीकॉप्टरों

और उन्नत तकनीक से सुसज्जित भारतीय वायुसेना देश की सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वायुसेना दिवस हमें याद दिलाता है कि आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए केवल पंख नहीं बल्कि अनुशासन, प्रशिक्षण, साहस और अटूट इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। राफेल, सुखोई और स्वदेशी तेजस जैसे लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की क्षमताओं का परिचय देते हैं, लेकिन किसी भी विमान की असली ताकत केवल उसकी गति या तकनीक में नहीं होती, उसकी ताकत उस प्रशिक्षित दल में होती है जो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखता है। हम वायुसेना की अगर बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत सामग्री पहुंचाना, बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना, दुर्गम क्षेत्रों में आवश्यक सामान पहुंचाना और संकट के समय नागरिकों की सहायता करना, ये सभी कार्य उसके मानवीय स्वरूप को भी दर्शाते हैं। भारतीय सेना वायुसेना युवाओं को यह संदेश देती है कि सपने बड़े हो तो उनके लिए मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। ऊंचाइयों को छूने के लिए अनुशासन, शारीरिक क्षमता, मानसिक दृढ़ता और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। वायुसेना में सेवा केवल एक पेशा नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भाव भी है। यहाँ व्यक्तिगत उपलब्धि से बढ़कर राष्ट्र का हित महत्वपूर्ण होता है और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वायुसेना की शक्ति केवल पायलटों तक सीमित नहीं है। तकनीकी विशेषज्ञ, इंजीनियर, चिकित्साकर्मी, संचार विशेषज्ञ और अन्य कर्मचारी मिलकर इस विशाल व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं।

दूसरी तरफ आज विश्व दृष्टि दिवस भी मनाया जा रहा है। अगर कल्पना की जाए कि सामने खिले फूलों के रंग ना दिखाई दे, सुबह की सुनहरी धूप का एहसास तो हो लेकिन उसकी चमक ना दिखे, अपने किसी प्रियजन का चेहरा सामने हो लेकिन उसे देख पाना असंभव न हो, तो कैसा महसूस होगा। हम में से अधिकांश लोग अपनी आंखों की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक कि हमारी दृष्टि से जुड़ी कोई परेशानी सामने नहीं आती। इसीलिए हर वर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह दिन 8 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों की आंखों के स्वास्थ्य, दृष्टि संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान और आंखों की देखभाल के प्रति जागरूक करना है। हमारी आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं, इसके जरिए हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं, चेहरे के भाव को पहचानते हैं, किताबें पढ़ते हैं, रास्ते पर चलते हैं और अपने प्रियजनों के साथ बिताए पलों को याद करते हैं। लेकिन आज की जीवन शैली में आंखों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टेलीविजन और लंबे समय तक स्क्रीन देखने की आदत से आंखों में थकान, सूखापन, जलन और धुंधलापन महसूस होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर दृष्टि समस्या का कारण स्क्रीन ही है। मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, मधुमेह से होने वाली आंखों की क्षति और रेटिना से जुड़ी बीमारियां भी दृष्टि को प्रभावित कर सकती है। कुछ बीमारियां शुरुआती अवस्था में स्पष्ट लक्षण भी नहीं देती, इसीलिए केवल परेशानी होने पर ही नहीं बल्कि आवश्यकता के अनुसार नियमित नेत्र जांच कराना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आंखों की देखभाल केवल बुजुर्गों के लिए नहीं है, बच्चों को भी समय समय पर दृष्टि जांच की जरूरत होती है। यदि कोई बच्चा स्कूल में बोर्ड देखने में कठिनाई महसूस करता है, किताब बहुत पास लाकर पढ़ता है या फिर बार बार आंखें मिचमिचाता है, तो उसकी जांच कराना उचित है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुलभ शिक्षा, उचित तकनीक, सहायक उपकरण और समान अवसर उपलब्ध कराना भी समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि किसी व्यक्ति की दृष्टि कमजोर होने पर यह अर्थ नहीं कि उसके सपने भी सीमित हो जाएं। अभी आप सुन रहे थे एक नजर

दर्पण कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल जगत। खेल जगत में आज हम बात कर रहे हैं हॉकी के महान गोलकीपर आशीष बल्लाल के बारे में।

हॉकी का मैदान, मुकाबला बेहद रोमांचक। दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं। अब जीत और हार के बीच केवल कुछ निर्णायक पल है। गोल पोस्ट के सामने खड़ा खिलाड़ी जानता है कि इस समय उसकी एक चूक वर्षों की मेहनत पर भारी पड़ सकती है। सामने से गेंद तेजी से आती है, दर्शकों की सांसें थम जाती है और गोलकीपर उसे रोकने के लिए छलांग लगा देता है। ये केवल एक बचाव नहीं, कभी कभी ये पूरे देश की उम्मीदों को बचाने जैसा होता है। आज बात कर रहे हैं भारतीय हॉकी के ऐसे ही जाबाज गोलकीपर की, आशीष कुमार बल्लाल की, जिसे दुनिया आशीष बल्लाल के नाम से जानती है। 8 अक्टूबर 1970 को जन्मे आशीष बल्लाल भारतीय हॉकी के उन खिलाड़ियों में शामिल रहे जिन्होंने अपने प्रदर्शन से गोलकीपर की भूमिका को एक नई पहचान दी। हॉकी में जब किसी भी खिलाड़ी की चर्चा होती है तो अक्सर लोग गोल करने वाले स्ट्राइकर का नाम पहले आता है। उनकी तेजी, ड्रिबलिंग और गोल करने की क्षमता दर्शकों को रोमांचित करती है। लेकिन अगर जरा सोचिए, अगर गोलकीपर की मजबूत ना हो तो आक्रमण से मिली हुई बढ़त कितनी देर तक सुरक्षित रह सकती है। गोलकीपर का काम केवल गेंद रोकना नहीं होता, उसे कुछ ही सेकंड में स्थिति का आकलन करना होता है, विरोधी खिलाड़ी की दिशा समझनी होती है और दबाव के बीच सही निर्णय लेना होता है। आशीष बल्लाल ने इसी भूमिका में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक सहित कई बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। 1998 का वह मुकाबला जिसने इतिहास रच दिया। सबसे यादगार अध्याय 1998 का बैंकॉक एशियाई खेलों में से जुड़ा हुआ है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम लंबे समय से एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरी बार भारत ने 1966 में यह स्वर्ण पदक जीता था। अब 1998 में दक्षिण कोरिया के विरुद्ध फाइनल मुकाबले में इतिहास बदलने का अवसर था। मैच का पहला फैसला पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा। ऐसे क्षणों में गोलकीपर पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। सामने खड़ा खिलाड़ी, गेंद पर टिकी निगाहें और पीछे खड़े लाखों देशवासियों की उम्मीदें। आशीष बल्लाल ने उस निर्णायक मुकाबले में दो महत्वपूर्ण पेनल्टी प्रयासों को रोककर भारत की जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई। कल्पना कीजिए, भारत ने स्वर्ण पदक जीता और 32 वर्षों तक का इंतजार समाप्त हुआ। उस दिन आशीष बल्लाल ने दिखाया कि खेल में नायक हमेशा वही नहीं होता जो गोल करता है, कभी कभी नायक वह होता है जो विरोधी को गोल करने से रोकता है। भारतीय हॉकी में उनके योगदान के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अनेक चुनौतियों का सामना किया और गोलकीपर के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनकी कहानी हमें यह समझाती है कि टीम के प्रत्येक सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मैदान पर दिखाई देने वाली सफलता के पीछे अभ्यास, अनुशासन, एकाग्रता और साथियों के बीच विश्वास की लंबी प्रक्रिया होती है। एक गोलकीपर के लिए तो यह और भी आवश्यक है, उसे कई बार पूरे मैच में शांत रहना पड़ता है, लेकिन निर्णायक क्षण आते ही पूरी तरह सक्रिय होना पड़ता है। आशीष बल्लाल की कहानी केवल एक खिलाड़ी गोलकीपर की कहानी नहीं है, यह उस खिलाड़ी की कहानी है जिसने कठिन समय में अपनी जिम्मेदारी निभाई और भारतीय हॉकी के इतिहास में एक यादगार अध्याय जोड़ दिया। 1998 के बैंकॉक एशियाई खेलों में उनके निर्णायक बचाव आज भी इस बात की याद दिलाते हैं कि जीत केवल गोल करने से नहीं, गोल बचाने से भी मिलती है। अगली बार जब आप हॉकी का मुकाबला देखें तो गोल पोस्ट के सामने खड़े खिलाड़ी को भी ध्यान से देखिएगा। हो सकता है पूरे मैच का सबसे महत्वपूर्ण क्षण उसी के हाथों में हो। अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल जगत, और खेल जगत में आज के खिलाड़ी थे आशीष बल्लाल।

चलिए जाते जाते हम आपको एक गीत सुनाते जाते हैं, बप्पी लहरी के संगीत में अमित खन्ना का लिखा हुआ गीत, किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म दिल से मिले दिल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to ₹10,000.
0: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
1: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड।
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए की निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
3: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
4: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके।

0: दिखाया है।
1: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीपफेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
2: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है, किस तरह से समाज के उन वर्गों को एआई का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल, जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है एआई का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा ना दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
3: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।

0: पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
2: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश एकेडमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: सेंसेक्स 1045 अंक गिरकर 71,593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़ककर 22,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ ₹96.79 पर बंद हुआ।
3: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
5: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने ₹1,000 दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं, इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में, लगभग सभी ब्लॉक्स में, 11 स्टेट्स में जोश की टीम को ये टास्क दिया गया है।
3: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुरगन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए पोषण माह से जन भागीदारी तक पोषण के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर नीना भाटिया। कार्यक्रम का संचालन

0: संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: डॉक्टर नीना, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीना, बचपन में शरीर और मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है और बचपन ही वो समय होता है जहां पर यदि किसी बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिले तो उसकी शारीरिक वृद्धि, सीखने की क्षमता और समग्र विकास प्रभावित हो सकता है, जिसमें हम ये मानते हैं कि केवल पेट भरना पर्याप्त नहीं बल्कि हर एक बच्चे को भोजन में अलग अलग पोषक तत्वों का संतुलन मिलना जरूरी है, जैसे कि प्रोटीन है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, खनिज पदार्थ, पर्याप्त ऊर्जा और स्वच्छ पानी, ये सारी चीजें जो बहुत ही आवश्यक होती है। तो पोषण माह जो हम मनाते हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है और इस माध्यम से देश भर के लोगों तक पोषण को लेकर के किस तरह का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है?
2: धन्यवाद। ये एक बहुत अहम प्रश्न है। पोषण माह से हमारा उद्देश्य ये है कि सभी लोग जो कि पोषण से जुड़े हैं, जिसमें कि लगभग 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडेड हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर इस महीने में पोषण के बारे में जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाएं और एक्टिविटीज के माध्यम से सभी को इन्वॉल्व किया जाए। सो इस साल हमारे पोषण माह का जैसे उद्देश्य और थीम है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, और इसके अंतर्गत 5 थीम और सब थीम्स और इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि भोजन में विविधता और प्रोटीन की उत्तम और पर्याप्त मात्रा, जिसे डाइटरी डाइवर्सिटी एंड एडिक्वेट प्रोटीन कहते हैं। इसी तरह फ्रेश कुक्ड हॉट मील्स जो आंगनवाड़ी में दिए जाते हैं, जो खाना ताजा बना हुआ 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी में दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, जो हम कह रहे हैं हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, तो एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि सभी लोग कम्युनिटी में ओनरशिप लें और अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी आंगनवाड़ी में जिस भी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो करें। और फिर न्यूट्रिशन फॉर एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट, मतलब जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए पोषण और उनके साथ खेल के थ्रू अर्ली स्टिमुलेशन, जिससे कि उनका ना सिर्फ पोषण पर मानसिक विकास और ओवरऑल विकास पे भी काम किया जा सके। और लास्ट इस बार का थीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको कैश ट्रांसफर किए जाते हैं। तो एक महीना लगकर चाहते हैं कि इन्हीं सभी विषयों पर सभी के पास जानकारी जाए और सभी लोग हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी का थीम समझते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ इसमें भाग लें।
1: डॉक्टर नीना, जैसा कि आपने जिक्र किया अकाउंटेबिलिटी का, जाहिर से बात है सभी की जिम्मेदारी बन जाती है, तो सरकार ने अपनी तरफ से पोषण अभियान शुरू किया जिसका कि उद्देश्य ये था कि अलग अलग विभागों और योजनाओं को साथ लाकर पोषण परिणामों में सुधार किया जाए और पोषण को जन आंदोलन बनाया जाए। तो सरकार ने पोषण अभियान से लेकर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 तक की कई महत्वपूर्ण पहल की है, तो इन योजनाओं के माध्यम से देश में जो भी पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें आम लोगों की भागीदारी किस तरह से सुनिश्चित की जा सकती है?
2: हम लोगों की जिम्मेदारी जो हमारे थीम्स हैं उन्हीं में है, और खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देखभाल करना है, उनकी पोषण को सुनिश्चित करना है, उसमें उनके पति का, उनकी सास का, एक बहुत परिवार जनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। फिर साथ ही साथ जो सभी सेवाएं सरकार के अलग अलग विभागों से और मंत्रालयों से दी जाती है बच्चों के लिए और माताओं के लिए, उनमें उनको रजिस्टर कराना, उनको हॉस्पिटल में उनकी प्रेगनेंसी को रजिस्टर कराना है, उनको जो भी टीकाकरण है वो कराना है, बच्चे की डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में कराना है। सो जो ये सारा पोषण से रिलेटेड बिहेवियर्स हैं जिनको एक परिवार को अडॉप्ट करना है और माँ की और बच्चे की मदद करनी है, जिससे कि जो भी जानकारी उन्हें दी जा रही है, जो भी स्कीम्स उनके लिए हैं, उनको परिवार के जन और समुदाय के जन मिलकर पूरी तरह से अपनाने में और इम्प्लीमेंट करने में मदद करें, और जो भी उनकी सेवाएं हैं उनको ठीक तरह से यूज भी करें और उनमें दिए गए संदेशों में अमल और पालन भी करें।
1: डॉक्टर नीना, आपने जिक्र किया गर्भवती महिलाओं का, तो ये आम व्यक्ति आम लोगों को अगर समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि ऐसा क्यों जरूरी है, खासतौर पे जब हम बात करते हैं कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार की आवश्यकता क्यों होती है, इसका महत्व क्या है और इसका जो होने वाले बच्चे होते हैं उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर क्या असर पड़ता है?
2: ये बहुत ही अहम मुद्दा है न्यूट्रिशन के तहत और पोषण के तहत। हम पहले 1000 दिनों महीनों की बात करते हैं, वो 9 महीने प्रेगनेंसी के और उसके बाद पहले 2 साल बच्चे की विकास की हैं, इनको एक गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और ये ऐसा पीरियड है जिसमें बच्चे का हर तरफ से चहुमुखी विकास हो रहा है। हम सब जानते हैं कि हम अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू करते हैं।

0: करते हैं और वो एक बच्चा सिंगल सेल से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, सभी काम चाहे वो छोटे स्तर पर देख सकता है, सुन सकता है, खा सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, उसकी ब्रेन की खास करके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो इसी 9 महीने में होती है। और डिलीवरी के बाद भी जो ये पहले 2 वर्ष हैं सबसे ज्यादा गति से विकास होता है पूरी लाइफ में, उसके बाद सिर्फ एडोलेसेंस किशोरावस्था में ही इतनी तेजी से विकास होता है, वो भी इससे शायद थोड़ा कम होगा जो। तो ये जो एक गोल्डन पीरियड है का जिसमें बच्चे की सभी चहुमुखी जिसे कहते हैं विकास हो रहा है, उसकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, उसकी कॉग्निटिव मानसिक ग्रोथ हो रही है, उसकी सोशल ग्रोथ हो रही है, तो इस पीरियड में अगर न्यूट्रिशन में कोई भी कमी रह जाती है तो उसका असर पूरी लाइफ लॉन्ग बच्चे के ऊपर रहता है। और कई कुपोषण हैं जैसे कि स्टंटिंग जिसमें जिसे हम नाटापन कहते हैं, जिसमें बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पाती है क्योंकि वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड मतलब पूरे 1000 दिन में उसको खाना ठीक से नहीं मिला है, तो वो एक क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन हो गया। तो उसका इफेक्ट जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, तब भी देखा जाता है उनकी पढ़ाई लिखाई पर, उनका स्कूल पूरा कर पाने पर, और इवन जब वो बड़े होकर कमाना चाहते हैं उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये गोल्डन पीरियड है बच्चे के विकास के लिए, और हमारे लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि जो हम संपूर्ण न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट अगर इस समय देते हैं तो हमें मैक्सिमम जैसे कहते हैं रिटर्न्स वो मिलते हैं।
1: डॉक्टर नीना, हम लगातार पोषण की बात कर रहे हैं और सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। सरकार ने मोटे अनाज का भी लाभ आम जन तक पहुंचाने की बात कही है, जिसके लिए तमाम प्रयास किए गए, हम उसे श्री अन्न भी कहते हैं। तो देश के हर एक परिवार तक यदि इस बात को पहुंचाने की कोशिश की जाए कि पोषण का एक बड़ा हिस्सा हमें मोटे अनाज से प्राप्त हो सकता है, तो इस बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरह से इसका लाभ उठाया जा सकता है?
0: श्री अन्न जिसे आज हम मोटा अनाज कहते हैं वो हमेशा से हमारी पारंपरिक खाने पीन का हिस्सा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद खासकर से हमारी जो डाइट है उसमें वीट और राइस गेहूं और चावल का ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है, ज्यादा इनटेक बढ़ गया है। मगर जो मोटा अनाज है वो एक फाइबर में रिच है, विटामिन और मिनरल्स में रिच है। उसको अगर हम डाइटरी गाइडलाइंस ऑफ फॉर इंडियंस जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ICMR के तहत जारी की जाती हैं, उसमें कहा गया है कि जो आप सारा अनाज खा रहे हैं उसका 20% हिस्सा अगर मोटे अनाज से आए तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो हमारे को फाइबर देगा, वो हमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल देगा, वो हमारी ब्लड ग्लूकोज को बहुत तेजी से बढ़ने से रोकेगा। आजकल हम सिर्फ कुपोषण में कम न्यूट्रिशन से ही नहीं प्रभावित हो रहे हैं, हम ओवर न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं कि उससे रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी से भी प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको भी प्रिवेंट करने में मदद करेगा। और ये सभी मोटे अनाज आसानी से मिल जाते हैं अगर हम देखेंगे तो हमारी एक पारंपरिक जो डाइट है उसका वो हिस्सा रहे हैं, उनको अगर हम अपने पूरा दिन में कम से कम एक मील में अगर इंक्लूड करेंगे तो उसका हमें काफी लाभ मिल सकता है।
1: डॉक्टर नीना, हम पोषण और जन भागीदारी की बात कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या हमने देखी है एनीमिया की, यानी कि खून की कमी भी देश में पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए। महिलाओं की बात हो, किशोरियों की बात हो, या फिर छोटी बच्चियों की बात हो, या बच्चों की बात हो, तो एनीमिया की रोकथाम के लिए सही खानपान की क्या भूमिका है? और जन भागीदारी की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम लोग या कम से कम बच्चियां या कम से कम महिलाएं इस समस्या से ग्रसित हों?
0: ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए अनीमिया की, क्योंकि लगभग 50% से ज्यादा महिलाओं में खून की कमी जिसे कहते हैं हम आमाशा में और या हीमोग्लोबिन की कमी हो पाई जाती है, और इसमें खान पान का बहुत ही महत्व है क्योंकि हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं वो दो पार्ट में बनता है, एक उसका पार्ट है ग्लोबिन जो कि प्रोटीन होता है और हीम जो कि जिसमें आयरन होता है, मगर इसके अलावा इसको बनाने में विटामिन B12, विटामिन C, काफी विटामिन का भी रोल रहता है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम डाइट खाएं उसमें विभिन्न तरह के खाने इंक्लूड किए जाएं, खासकर प्रोटीन क्वालिटी पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जैसे मैंने बोला उसका आधा हिस्सा प्रोटीन से बनता है ग्लोबिन पार्ट। हम जो हमेशा से अनाज और दालों का मिश्रण खाते आए हैं कम से कम उसको 4:1, 4 हिस्से अनाज में 1 हिस्सा दालों का या नट्स का जो प्रोटीन रिच चीजों का होना चाहिए उसको इंक्लूड करना है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयरन की हमारा अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो उससे रिलेटेड उससे रिच बहुत ही लोकल फूड्स मिलते हैं हम अलग अलग जगह में, खासकर हरी पत्तेदार सब्जियां, उनको हमें अपने रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना है। और
1: जी
0: उसके साथ विटामिन सी वाली चीजें अगर हम उसमें नींबू निचोड़ सकें, हम

0: मसालों को अंकुरित करके खा सकते हैं, उसमें हम नींबू निचोड़ सकते हैं, और हमें खाने के आधे घंटे पहले और बाद में चाय और कॉफी नहीं लेनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। और हमें कीड़ों से बचने की दवाई जो होती है हर 6 महीने में बच्चों को देनी है। इसके अलावा सभी छोटे बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और धात्री महिलाओं के लिए, और जो महिलाएं 15 से 49 ईयर्स की एज में, उनके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से IFA की टेबलेट्स दी जाती हैं, वो जिनको हर एक ग्रुप को, किसी को हफ्ते में एक बार, किसी को रोज, किसी को हफ्ते में 2 बार खाना होता है। तो जैसा उनके लिए सुनिश्चित किया गया है उसको लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग एनीमिया को एक समस्या नहीं समझते, वो देख नहीं पाते हो शायद
1: जी
0: उसके कॉन्सिक्वेंसेस, गोली मिलने के बाद भी वो धरी रहती है और लोग खाते नहीं है। तो गोली का भी अपना महत्व है, और साथ में एक संपूर्ण आहार
1: जी
0: इन लोगों को और पूरी परिवार को भी खाना चाहिए, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जन भागीदारी में जो परिवार के लोग हैं वो ये सुनिश्चित करें कि हमारी किशोरियां, हमारी बच्चियां, गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं ये गोलियां जरूर लें, जिससे उनमें अनीमिया की प्रॉब्लम ना हो।
1: डॉक्टर नीना, आज हम पोषण को केवल एक सरकारी योजना ना कह करके जन आंदोलन कहने की बात करते हैं कि ये जन आंदोलन है, जन भागीदारी है। परिवार हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, स्कूल हो, पंचायत हो, या फिर स्थानीय समुदाय हो, तो इस अभियान में तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आप ऐसा क्या कहना चाहेंगी कि सभी लोग मिलजुल करके इन समस्याओं से उबरने के लिए, हमारे बच्चों को उनसे उबारने के लिए प्रयास करने में और आगे आए?
0: हमारे देश में बहुत विभिन्नता है, खाने की
1: जी
0: बहुत रिचनेस भी है, बहुत चीजें अवेलेबल हैं, और हम कश्मीर में रहते हैं कि हम गुजरात में रहते हैं, अलग अलग तरह के खाने ऐसे देश प्रदेशों में अवेलेबल हैं। और ये एक बहुत पर्सनल मैटर भी है कि हम जो खाएं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सभी परिवार और परिवार के जो बड़े हैं और मुखिया हैं, वो खाना ऐसा सेलेक्ट करें जो कि पोषण के आधार पर सेलेक्ट करें, और उसमें संपूर्ण ऊर्जा भी मिले, प्रोटीन भी मिले और सारे विटामिन और मिनरल मिले। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, इसको अगर हम समझें तो हमारी थाली जो होती है उसमें आधा सब्जी और फल से भरें, और बाकी आधे में हमें बाकी सभी चीजों, जिसमें से बाकी आधे का भी 1/3 अनाज हो सकता है, मगर उसके अलावा प्रोटीन, थोड़े नट्स, थोड़ी अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमें नॉन वेजिटेरियन फूड, थोड़ा ऑयल, चीनी और दूध से बनी चीजें ये लेनी है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है जान पाना, क्योंकि हम देख सकते हैं। और इस जन भागीदारी को कराने के लिए हर एक परिवार को ये देखना है कि उनके परिवार में इस तरह का खाना बन रहा है, बहुत ज्यादा वसा युक्त, सॉल्ट युक्त और शुगर
1: जी
0: युक्त, जो आजकल बहुत प्रचलन हो गया है रेडी टू ईट फूड्स का, और बहुत उसका उनका हमें कम करके, बल्कि हमें अपने पारंपरिक खाने पे, जिनको हम भूलते जा रहे हैं, जैसे मोटा अनाज की भी बात है, तो इन्हीं डाइटरी प्रैक्टिसेस और इन्हीं चीजों को वापस सम्मिलित करें। खासकर गर्भावस्था और धात्री महिलाएं हैं या किशोरियां हैं या छोटे बच्चे हैं, उनके खाने पे और अधिक ध्यान दें, और सभी मिलकर ही इस समस्या का तभी समाधान हो सकता है। हर परिवार को इसको सुनिश्चित करना है
1: जी
0: और अपनी पर्सनल चॉइसेस के बेसिस पे करना है, जो कि बिल्कुल
1: जी
0: संभव है।
1: जी श्रोताओं, आपको बता दें कि तकनीक के इस्तेमाल से आज के समय में पोषण सेवाओं की निगरानी और भी बेहतर हुई है। आज हमारे पास पोषण ट्रैकर है, जो बच्चों की वृद्धि, पोषण सेवाओं और लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच की निगरानी करने में मदद कर रहा है। डॉक्टर नीना, हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे पोषण माह से जनभागीदारी तक पोषण के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर नीना भाटिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

0: दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया, कहा पाकिस्तान आतंकी गुटों को समर्थन देने को छिपा नहीं सकता। इटली की संसद ने देश की चुनाव प्रणाली में व्यापक बदलाव को अंतिम मंजूरी दी। कनाडा की कवियत्री एनी कार्सन को शास्त्रीय परंपरा और समकालीन रूपों के मिश्रण से बने साहसी और नवोन्मेषी कार्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन की महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना बेहद आवश्यक है। श्री मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
1: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
0: प्रधानमंत्री ने आज कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सुविधा दी है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 से 12 वर्षों में मोबाइल फोन केवल आधुनिक संचार का माध्यम ही नहीं बना, बल्कि सुशासन का एक महत्वपूर्ण साधन भी बना है। भारत और रूस ने आज रक्षा क्षेत्र में भारत रूस सामरिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के लिए मौजूदा सैन्य तकनीकी सहयोग और सह उत्पादन तथा सह विकास पहलों को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की। सैन्य तकनीकी सहयोग और रक्षा उद्योग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 24वीं कार्य समूह की बैठक के उद्घाटन सत्र का आयोजन आज नई दिल्ली में किया गया। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9 सितंबर 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत और लाइबेरिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड सीफेयर्स S4 के सह अध्यक्ष के तौर पर जहाजों और नाविकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान में खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों तथा काला सागर में पिछले कुछ दिनों में व्यावसायिक जहाजों और नाविकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि समुद्री व्यापार में बाधा डालने वाली और निर्दोष लोगों की जान लेने वाली ये हरकतें किसी भी तरह स्वीकार नहीं है। दोनों देशों ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने

0: के लिए ऐसे हमलों को तुरंत रोकने की मांग की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इटली की संसद ने आज देश की चुनावी प्रणाली में व्यापक बदलाव को अंतिम मंजूरी दे दी है। इससे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत मिली। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रस्ताव को व्यापक रूप से इटली की राजनीतिक प्रणाली को मजबूत करने और प्रधानमंत्री मेलोनी के नेतृत्व वाले मध्य दक्षिण पंथी गठबंधन की चुनावी संभावनाओं को बेहतर बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पिछले महीने इस गठबंधन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली की सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार होने का रिकॉर्ड बनाया था। सदन ने गुप्त मतदान में 227 वोटों के मुकाबले 164 वोटों से इस विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे महीनों की गर्मागर्म बहस के बाद इस कानून को अंतिम संसदीय मंजूरी मिल गई। इस उधार में एक बड़ा बहुमत पुरस्कार शामिल है। इसके अंतर्गत चुनाव पूर्व विजयी गठबंधन को संसद के दोनों सदनों में अतिरिक्त संसदीय सीटें दी जाएंगी, बशर्ते उसे कम से कम 42% राष्ट्रीय वोट प्राप्त हों। नए कानून के अंतर्गत इटली की मौजूदा मिश्रित चुनावी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान शास्त्रीय परंपरा और समकालीन रूपों के मिश्रण से बने साहसिक और नवोन्मेषी कार्य के लिए मिला है। स्वीडिश अकादमी ने स्टॉकहोल्म में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रूपये है। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिका के अधिकारियों ने आज जारी किए गए नए अभियोग में यातना और अन्य अपराधों का आरोप लगाया है। इससे मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों से जूझ रहे इस सत्तावादी नेता पर दबाव और बढ़ गया है। मादुरो पर पहले अमेरिका में कोकीन भेजने की साजिश में शामिल होने का आरोप था। अब मादुरो तेल समृद्ध दक्षिण अमरीकी देश के राष्ट्रपति के रूप में अपने शासनकाल के दौरान मानवाधिकारों के हनन के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं। सुरक्षा बलों द्वारा काराकस स्थित घर से आधी रात को छापेमारी करके गिरफ्तार किए जाने के बाद मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस जनवरी की शुरुआत से न्यूयॉर्क की जेल में हैं। दोनों ने अपने और कई कथित सहसाजिशकर्ताओं के खिलाफ वर्षों पहले शुरू किए गए आपराधिक मामलों में खुद को निर्दोष बताया है। दोषी पाए जाने पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और थरुन मान्यपल्ली पुरुष सिंगल्स में हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डी फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कहा, पाकिस्तान आतंकी गुटों को समर्थन देने को छिपा नहीं सकता है। इटली की संसद ने देश की चुनावी प्रणाली में व्यापक बदलाव को अंतिम मंजूरी दी। कनाडा की कवियत्री एनी कार्सन को शास्त्रीय परंपरा और समकालीन रूपों के मिश्रण से बने साहसी और नवोन्मेषी कार्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Renuka with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential. Calls for global framework to tackle deep fakes and cyber frauds. India accuses Pakistan of doublespeak on terrorism, says Islamabad cannot gloss over support to terror groups.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to 10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका और वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीमों का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारतीय सेना की 94वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने वायु सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वायुसेना दिवस पर देश के सभी बहादुर वायु योद्धाओं को सलाम किया। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको कुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मान्यपली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in National Capital this evening.
1: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore. So prosecution is not going to happen for anything below 1 crore. Till now that's been the threshold. Now it's taken up to 5 crores.
4: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a proportionate penalty. The finance